भजन करो हरे जगत जगता।

भजन करो हरे जगत।

एपिसोड नंबर 11 सफाई कर्मचारी। इस एपिसोड का उद्देश्य है लोग सफाई कर्मचारियों का काम, उनकी जिम्मेदारियां, मुश्किलों और परेशानियों को ठीक से समझें। सफाई कर्मचारियों को फायदेमंद योजनाओं की जानकारी दी जाए, साथ ही ऐसा माहौल बनाया जाए जिससे उन्हें इज्जत और मान सम्मान मिले। इस कार्यक्रम के मुख्य संदेश है सफाई कर्मचारियों का काम और उनकी समस्याएं, सरकारी योजना और कानूनी सुरक्षा, पंचायती राज संस्थाओं का सहयोग, पहले और बाद में पूछे गए कुछ सवाल। सवाल नंबर 1, क्या सफाई कर्मचारियों को काम करते समय सुरक्षा उपकरण जैसे मास्क दस्ताने पहनने चाहिए, हाँ या नहीं? सवाल नंबर 2, क्या गांव के सभी सफाई कर्मचारियों की पहचान और पंजीकरण ग्राम पंचायत द्वारा किया जाना चाहिए, हाँ या नहीं? क्या ग्राम पंचायत को सफाई कर्मचारियों की सेहत की जांच समय समय पर करानी चाहिए, हाँ या नहीं? श्रोताओं, ये 3 सवाल हैं, इसके जवाब आपको इसी कार्यक्रम में मिलेंगे, इसीलिए कार्यक्रम ध्यान से सुनिएगा। विशेष रूप से सफाई कर्मचारियों के लिए इन योजनाओं पर ध्यान दिया जा सकता है, जैसे आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PMJAY योजना के तहत प्रत्येक परिवार को इलाज के लिए हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा मिलता है। ये इलाज बड़े अस्पतालों में भी कराया जा सकता है। दूसरी योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये योजना सफाई कर्मचारियों और अन्य लोगों के जीवन बीमा का फायदा देती है। अगर किसी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को 2 लाख की सहायता राशि दी जाती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये तीसरी योजना है। इस योजना में ऐसे मामलों में मदद की जाती है जब किसी सफाई कर्मचारी की गंभीर दुर्घटना हो जाती है। अगर दुर्घटना में मौत या पूरी तरह से अपंगता हो जाती है तो 2 लाख की सहायता राशि मिलती है। अगर कुछ हद तक अपंगता होती है तो 1 लाख तक की मदद दी जाती है। स्वच्छता योद्धा, स्वच्छता के गुमनाम नायक,

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो बुंदेलखंड पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम संपूर्ण स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी। मैं हूं आपकी आरजे वर्षा और मेरे साथ है मेरे आरजे आरजे
1: माता दीन।
0: कभी भी सड़क पर कचरा नहीं फेंकते हैं, दूसरों को भी साफ सफाई का ध्यान रखने के लिए कहते हैं।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे माता दीन। आज हम एक खास एपिसोड लेकर आए हैं। इसमें हम उन लोगों की बातें करेंगे जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनकी तारीफ कम होती है।
0: बिल्कुल सही कहा माता दीन, वे ना तो सूट पहनते हैं और ना ही बड़े दफ्तरों में बैठते हैं, लेकिन उनके बिना साफ भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। ना साफ सड़कें, ना ठीक से चलने वाले शौचालय और ना ही रोज की सफाई होगी।
1: आज का एपिसोड उन सफाई कर्मचारियों के बारे में है जो स्वच्छता के असली हीरो हैं। वे गलियां साफ करते हैं, सेप्टिक टैंक खाली करते हैं, नालियां साफ करते हैं और कई बार बहुत मुश्किल हालात में भी लगातार काम करते रहते हैं ताकि साफ, सुरक्षित और रहने लायक माहौल बना रहे।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि नाली, स्कूल परिसर या सार्वजनिक शौचालय किसने साफ किया? ज्यादातर लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते।
1: हाँ, उनका काम दिखता तो है लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। पर आज ऐसा नहीं होगा। आज हम उनके काम के साथ साथ उनकी जिंदगी और परेशानियों की बात भी करेंगे। ये भी बताएंगे कि वे भी सुरक्षा, मदद और सम्मान के हकदार हैं।
0: वे ऐसे काम करते हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग सोचते भी नहीं, जैसे गंदे टैंक साफ करना, जाम नालियों को खोलना, भारी मशीनें चलाना और कचरा साफ करना। इन कार्यों की वजह से उन्हें हैजा, टाइफाइड, पीलिया और सांस की बीमारियों का खतरा बना रहता है।
1: एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में 50 लाख से ज्यादा सफाई कर्मचारी काम करते हैं। उनमें से करीब 20 लाख लोग ऐसे काम करते हैं जो बहुत जोखिम भरे होते हैं।

0: सोचिए, अगर ये बिना मास्क, दस्ताने या सुरक्षा उपकरणों के काम करते हैं तो उन्हें कितनी परेशानी होती होगी।
1: ये काम बहुत खतरनाक होता है। दुख की बात ये है कि ये लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। सफाई कर्मचारी कई बार कम वेतन में नौकरी की गारंटी के बिना मुश्किल हालात में काम करते हैं।
0: लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। सरकार ने खासकर स्वच्छ भारत मिशन के जरिए सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए कई अच्छे कदम उठाए हैं। कुछ खास योजनाएं हैं जिसका उद्देश्य उन्हें सुरक्षित और सम्मानित बनाना है।
1: दोस्तों, आज हम राष्ट्रीय यत्रीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र अभियान यानी नमस्ते योजना के बारे में बात करेंगे। ये योजना दो मंत्रालयों, सामाजिक न्याय मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय की साझी पहल है।
0: इसका मकसद सूखी शौचालयों, खुली नालियों या सेप्टिक टैंकों से मानव मल को बिना मास्क या दस्ताने के हाथ से साफ करने की खतरनाक प्रथा को समाप्त करना है।
1: नमस्ते योजना के तहत सफाई कर्मचारियों को वैक्यूम मशीन चलाना सिखाया जाता है और उन्हें मास्क, दस्ताने, जूते और सुरक्षा साधन जैसे जरूरी सामान इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही उन्हें इलाज के लिए बीमा और कानूनी सुरक्षा भी मिलती है।
0: क्या आप जानते हैं कि अगर किसी को बिना सुरक्षा के शिविर साफ करने को मजबूर किया जाए तो ये भारतीय कानून के हिसाब से गलत माना जाता है?
1: हाँ, मुझे पता है। सफाई कर्मचारी को बिना सुरक्षा उपकरण के सीवर में भेजना गलत है। ऐसा करना कानून के खिलाफ है।
0: सही कहा, लेकिन कई जगहों पर नियम का पालन नहीं होता है। सफाई कर्मचारी को बस एक बाल्टी देकर गंदे माहौल में उतरने को मजबूर किया जाता है, जिससे उन्हें हैजा, पीलिया और सांस की बीमारी जैसी समस्याओं का खतरा रहता है। साथ ही चोट लगने और जहरीली चीजों से नुकसान का डर भी रहता है।
1: मुझे लगता है कि उचित कदम उठाने का समय आ गया है। कानून का पालन करें और साफ सफाई का काम करने वालों को सम्मान दें।
0: और यही पंचायतों की भूमिका शुरू होती है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत पंचायत की जिम्मेदारी है कि सफाई कर्मचारी सुरक्षित रहें, उन्हें अच्छा वेतन मिले, उन्हें काम की ट्रेनिंग दी जाए और उनके साथ इज्जत से पेश आया जाए।
1: पंचायत सफाई कर्मचारियों की सूचना एक जगह जमा कर सकती है, उन्हें फोटो वाले पहचान पत्र दे सकती है और उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ सकती है, जैसे इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना, घर के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना और गैस कनेक्शन के लिए उज्ज्वला योजना।
0: चलिए अब इन योजनाओं की और जानकारी देते हैं।
1: बिल्कुल, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या PMJAY एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसके तहत हर योग्य परिवार को अस्पताल में इलाज के लिए साल भर में 5 लाख तक की मदद मिल सकती है। इसके लिए सफाई कर्मचारी अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या ग्राम पंचायत ऑफिस जा सकते हैं। उन्हें सिर्फ आधार कार्ड और राशन कार्ड ले जाना होता है। पंचायत उन्हें ई हॉस्पिटल ID बनवाने और क्लेम की प्रक्रिया समझाने में मदद भी करती है। इस तरह अगर परिवार में कोई गंभीर रूप से बीमार हो जाए तो इलाज की चिंता नहीं करनी पड़ती है।
0: और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी PMAY जी की। ये योजनाएं लोगों को पक्के घर बनवाने में मदद करती हैं। इसके तहत उन्हें जरूरी सुविधाएं वाले घर बनाने के लिए पैसे मिल सकते हैं। प्रक्रिया आसान है, वे अपने ग्राम पंचायत के ऑफिस जाएं, वहां उनके आधार कार्ड और जमीन के कागज देखे जाएंगे, फिर पंचायत उनका आवेदन करेगी। अगर मंजूरी मिल जाती है तो उन्हें घर बनाने के लिए पैसे दिए जाते हैं।
1: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यानी PMJJBY एक ऐसी जीवन बीमा योजना है जो किसी भी कारण से मौत होने पर 2 लाख का कवर देती है। ये योजना 18 से 50 साल की उम्र के लोगों के लिए कम सालाना प्रीमियम पर उपलब्ध

0: उपलब्ध है। सालाना प्रीमियम 436 रुपए प्रति व्यक्ति है।
1: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY एक दुर्घटना बीमा योजना है जो 18 से 70 साल की उम्र के लोगों के लिए अचानक मौत या अपंगता के लिए 2 लाख रुपए तक का कवर देती है। ये योजना प्रति व्यक्ति 20 रुपए प्रति वर्ष के सस्ते सालाना प्रीमियम पर उपलब्ध है।
0: देखिए, सफाई कर्मचारियों के लिए कई योजनाएं हैं जिसका भी फायदा उठा सकते हैं, लेकिन कई बार लोगों को आवेदन करने का तरीका पता नहीं होता, इसलिए जरूरी है कि इस बारे में लोगों को बताया जाए। अगर आप सफाई के काम में लगे किसी भी व्यक्ति को जानते हैं तो उन्हें जरूर अपनी पंचायत से बात करने और इन योजनाओं का फायदा उठाने के लिए कहें, इससे उनकी जिंदगी बेहतर हो सकती है।
1: हाँ, ये उनके लिए बहुत काम की बात होगी। पंचायत को समय समय पर ऐसे कैंप भी लगाने चाहिए जहाँ सफाई कर्मचारियों को लाभ देने वाली योजनाओं के बारे में बताया जाए।
0: ये बहुत काम की बात होगी। ये भी ना भूलें कि हर कर्मचारी को काम की जगह पर PPI किट, साफ शौचालय, पीने का पानी और फर्स्ट एड की सुरक्षा मिलनी चाहिए।
1: एक और जरूरी बात है, सफाई कर्मचारियों के लिए सेहत से जुड़े कैंप का आयोजन होना चाहिए। वे अक्सर खतरनाक चीजें जैसे संपर्क में आते हैं, उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए जरूरी है कि पंचायती राज संस्थाएं समय समय पर उनकी डॉक्टर से जांच कराएं, समय समय पर टीके लगवाएं और लगातार मदद देते रहें।
0: प्रशिक्षण भी उतना ही जरूरी है। सफाई कर्मचारियों को प्राथमिक चिकित्सा औजारों के इस्तेमाल, मशीन चलाने और डिजिटल साक्षरता का भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे अपने फायदे ऑनलाइन देख सकें।
1: ये सब तो समझ में आती है, लेकिन एक और बात है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ।
0: बताओ क्या बात है?
1: मैं सोच रहा हूँ कि क्या हम सफाई कर्मचारियों के नाम जानते हैं, उनके परिवार के बारे में कुछ जानते हैं, और क्या हम उनके लोगों को धन्यवाद कहते हैं जो हमारी गलियां, नालियां, शौचालय और सड़कें रोज साफ करते हैं।
0: शायद ही कभी, लेकिन हमें ऐसा करना चाहिए। हमें ये तय करना चाहिए कि सफाई दिवस पर ग्राम सभा की बैठकों में, स्कूल के कार्यक्रमों में सफाई कर्मचारियों को सम्मान दिया जाए, उनके काम के लिए उन्हें इज्जत, मान सम्मान और पहचान मिले।
1: हाँ, ये एक बहुत बढ़िया सोच है। महीने का सबसे अच्छा सफाई कर्मचारी जैसा बेज भी किसी को गर्व महसूस करा सकता है।
0: ये कोई दान नहीं बल्कि इज्जत है। ये तो बहुत पहले ही मिल जानी चाहिए थी। हमें अपने सफाई कर्मचारियों के लिए सम्मान भरा काम करने का माहौल बनाना होगा। जैसे बाकी काम होते हैं, वैसे ही सफाई भी एक काम है।
1: तो श्रोताओं, आज के इस एपिसोड में हम हर सफाई कर्मचारी, चाहे वो अब काम कर रहे हों या पहले करते थे, को सलाम करते हैं। उन्होंने चुपचाप मेहनत की है, गलियां साफ की हैं, नालियां खोली हैं, हमारी जिंदगी को साफ और सेहतमंद बनाया है। हम आपसे भी आग्रह करते हैं कि अगर आपको कोई सफाई कर्मचारी दिखे तो उन्हें धन्यवाद जरूर दें, उन्हें पानी, चाय या कुछ खाना दें, और सबसे जरूरी बात है उन्हें सम्मान दें, उनका काम इज्जत के काबिल है।
0: सफाई कर्मचारी भाइयों और बहनों, याद रखिए कि सुरक्षा के लिए पहने जाने वाले PPI किट पहनना भले ही थोड़ा असहज लगे, लेकिन ये आपकी जान बचाता है। दस्ताने, जूते और मास्क आपको खतरनाक बीमारियां और जहरीले गैसों से बचाते हैं। हर बार जब आप इन सुरक्षात्मक चीजों को पहचानना भूल जाते हैं तो आप सिर्फ अपनी नहीं अपने परिवार की सेहत को भी खतरे में डालते हैं। आपके कपड़ों पर लगे कीटाणु आपके बच्चों और जीवन साथी को भी बीमार कर सकते हैं। और हाँ, एक तय समय के बाद PPI किट बदलना बहुत जरूरी होता है। इसे साफ रखना भी उतना ही आवश्यक है।
1: प्यारे श्रोताओं, सुरक्षित रहिए, साफ रहिए। ये कभी मत भूलिए कि जो हमारे लिए सफाई करते हैं वो भी पूरे गर्व के साथ जीने के हकदार हैं।
2: आइए स्वच्छ भारत का निर्माण सिर्फ साफ सड़कों से नहीं बल्कि साफ दिलों से भी करें।
0: संपूर्ण स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी कार्यक्रम एपिसोड 11 यही समाप्त होता है। श्रोताओं, यह कार्यक्रम आप सभी को कैसा लगा है हमें जरूर जरूर जरूर बताइएगा हमारे नंबर पे कॉल करके। हमारा नंबर है 9219207749। श्रोताओं, जो सवाल हमने कार्यक्रम शुरू होने से पहले पूछे थे आपसे, एक बार फिर से उन कार्यक्रमों को यानी उन सवालों को हम दोहरा देते हैं। तो सवाल नंबर एक है, क्या सफाई कर्मचारियों को काम करते समय सुरक्षा उपकरण जैसे मास्क, दस्ताने पहनने चाहिए, हाँ या नहीं? सवाल नंबर दूसरा, क्या गांव के सभी सफाई कर्मचारियों की पहचान और पंजीकरण ग्राम पंचायत द्वारा किया जाना चाहिए, हाँ या नहीं? सवाल नंबर तीसरा और आखिरी, क्या ग्राम पंचायत को सफाई कर्मचारियों की सेहत की जांच समय समय पर करानी चाहिए, हाँ या नहीं? इन तीनों सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे अगर आपने यह कार्यक्रम बड़े ध्यान से सुना होगा। तो जल्दी से फोन उठाइए और हमें व्हाट्सएप करिए इन तीनों सवालों के जवाब हाँ या नहीं में। आज के इस कार्यक्रम से जाने का होता है हमारा समय और हम चलते हैं, फिर जल्दी ही आप सभी से मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और बीमारियों से दूर रहिए। नमस्कार।

अबे करो भरोसा हर पे, अबे करो भरोसा हर पे, करो भरोसा हर पे, ना करियो अपने

0: कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में हम अपने सभी श्रोता साथियों को बहुत ही बहुत स्वागत करेंगे और नमस्कार सब साथियों को हम
1: हमारी भी नमस्कार।
0: अरे मनीष भैया तनक बोलन तो देऊ करे कम से कम हमें, आप बीच बीच में टोक देते ही, मतलब का है तुम बात कर रहा अपने साथ।
1: नहीं नहीं, हमारी भी नमस्कार पहुंच जावे सभी श्रोता साथियों को, काय से हम वो कामयाब कार्यक्रम जो रथ है वो।
0: हाँ वो तुम
1: नहीं हमारे युवा साथी जो सोचे थे के मनीष भैया या कार्यक्रम को लेके आते हैंगे।
0: हाँ, और हमें मतलब जो जानकारी है थेंगे। नहीं हाँ। नहीं जो ही मतलब है कि तुम हमें जो क्या पहुंचा रहे हैं कि जो कार्यक्रम तो हमारा है हम ही अपने साथी इनके बीच में लेके आऊ थे, तो आज जी कैसे पहले भूल गई की बात को तुम्हें बुरा लगा हुज्जे से तुम बीच में हमारी बात काटन लगे।
1: नहीं ऐसा नहीं है बात, और हम अपने साथियों को बड़ी खुशी होती जब हमारे साथी हमसे जुड़ के पूछे थे के भाई साहब ये कार्यक्रम सुन के हमने अपने जीवन में बदलाव करो है को। कैसे कई वर्ष हो गए हैं 2008 से जब हम लोग चला रहे कार्यक्रम को, और 2008 के बाद हमने जो कार्यक्रम की रूपरेखा जो तैयार करी है थी वह रूपरेखा हमारे श्रोता साथी ने जो अपने सुझाव दिए थे उन्हीं सुझाव के आधार पर हमने जो रूपरेखा तैयार करी थी। अब जैसे हम होंगे कामयाब कार्यक्रम, हम तो हुए ही कामयाब, लेकिन हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में हम ऐसे ऐसे चाहे वो व्यवसाय हो।
0: अरे बस मनीष भैया बस बहुत ज्ञान देते हैं आप, इतनो ज्ञान जब बोला थेंगे तो ऐसा लगत के कितु बैठ के और बढ़िया ज्ञान को भंडार भरो हुए और वो लेट हुए। अब तना बता तो दो कौन सो कार्यक्रम लेके आए हैं?
1: जो कार्यक्रम को नाम है मित्रों हम होंगे कामयाब कार्यक्रम, और जहाँ मैं अपन सुनाते हैं छोटो काम बड़ा मुनाफा।
0: ये यानी के भी को मतलब है कि छोटो काम करो और मुनाफा बड़ो कमाओ।
1: हाँ, और जब कार्यक्रम में हम जैसे हम कामयाब कार्यक्रम रखेंगे तो उन कार्यक्रम में हम अपने साथियों को चाहे वो जैसे अपन नौकरी करवे जा रहे हैंगे।
0: हाँ।
1: तो नौकरी के लाने कैसे इंटरव्यू दें हमारे साथी, बाकी लाने भी उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होते हैं व्यक्तित्व विकास जो रहते हैं, यदि आपके पास अपने बोलने की क्षमता नहीं है, आप जैसे इंटरव्यू देने जा रहा है तो आप हिचकिचाते होगे, कैसे बहुत ज्यादा समय लगता है जी चीजें को सीखने में। यदि आप किसी के पास बैठे हो उनका सवाल का है उसका जवाब कौन तरीके से देना है वो, तो नौकरियों में जी चीजें हमें विशेष तौर पर ध्यान रखो चाहिए, तभी हमारा व्यक्तित्व निखरे है वो, और तभी हम आगे बढ़ सके। तभी हमने जो कार्यक्रम को नाम रखो तो हम होंगे कामयाब एक दिन।
0: लेकिन जो तो बताओ अबे अपन का सुन रहे हैंगे और आप बता की के बारे में रहे?
1: नहीं हम कामयाब कार्यक्रम के बारे में बता रहे
0: हैं, हमारे बहन को एक फोन आ रहा है बता दो।
1: चलो अपनी बहन को एक फोन आ रहा है जी, बे का सलाह दे रही है उनको सुना थे कैसे हमारे जी बहुत अच्छे साथी हैंगे। एक चीज हम एक बारे में बताबो चाहते हैं,
0: फोन तो उठा।

0: पहला वो
1: नहीं हम बिल्कुल उठाए ले रहा है फोन। हम अपने साथियों को बताना चाहते हैं कि व्यवसाय करवो और व्यवसाय के बारे में समझवो, ये बहुत बड़ी चीज रहती है। जैसे अपन किसी बड़े व्यवसाय के बारे में या सफल व्यवसाय के बारे में बात करते हैं तो वास्तव में जो सीख मिलत है उनके जो अनुभव रहते हैं उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहेगी।
0: अब फोन कटाओ, आप काय में से उठा रहे
1: हैं। चलो हमारे संग टीकमगढ़ से रूपा जी जुड़ रही हैं, चलो उनसे बतकाओ अपन कर लेते हैं तो उनके अनुभव को साझा कराते हैं।
0: तो बात तो हम ही करें, आपको ना करें।
1: चलो आप ही कर लो भैया, रूपा जी को फोन है वो आप ही बात।
0: हाँ ठीक है। हेलो नमस्ते।
2: नमस्ते, रूपा रानीपुरा से, जिला टीकमगढ़ से। अभी वर्तमान में हम गांव में सिलाई सेंटर टीकमगढ़ से आया है। अभी सिलाई सेंटर का काम चल रहा है, इसमें कपड़ा भी आए हुए है तो कपड़ा की सिलाई चल रही है, सिलाई सीखेंगे अब।
0: अच्छा, यानी कि आप सिलाई का काम कर रही हैं। तो सिलाई का काम आपने कहाँ से सीखा है, कहीं प्रशिक्षण लिया था क्या?
2: हाँ, जिला टीकमगढ़ में हमने केंद्रीय टीकमगढ़ प्रशिक्षण में सेंटर सिलाई खुला हुआ था, वहाँ पे हमने एक महीने सिलाई सेंटर सीखा। वहाँ से फिर हम गांव में आ गए, रानीपुरा गांव में, वहाँ से फिर सिलाई सेंटर खुला। तो यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके सिलने लगे, फिर तो पैसे भी मिलने लगे
0: जी,
2: और यहाँ पे अपने रोजाना आते जाते हैं
0: जी। तो रूपा जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपने सिलाई सीखी है, यानी कि आपने ट्रेनिंग ली है, उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ा, कैसे आपने उसमें अप्लाई किया, कहीं से जानकारी आपको मिली तो वो कहाँ से मिली?
2: हाँ, वैसे गांव के थे आदमी जो, जिन्होंने सिलाई सेंटर खोला ना समूह से
0: जी,
2: उनसे हमने संपर्क किया। तो फिर उन्होंने बुलाया, उनके बारे में जो कुछ लगा, कागज वगैरह नाम सारा कुछ लगा के फिर बस यहाँ से हमने शुरू किया काम। तो टीकमगढ़ में हमने सिलाई सेंटर सीख के फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। फिर एक महीना हमें टीकमगढ़ में सिलाई सेंटर सीखने का मौका मिला, फिर एक गांव में आ गए। तो बस ऐसे ही आगे बढ़ रहे, हमें बहुत अच्छा लगा है
0: जी। तो आपने जब अप्लाई किया था, वहाँ पे कुछ फीस वगैरह आपकी ली गई थी क्या?
2: नहीं, फ्री में सीखा।
0: अच्छा, कोई पेमेंट नहीं हुआ था आपका, मतलब पैसे नहीं लगे थे?
2: नहीं।
0: अच्छा, तो रूपा जी, आप इससे पहले, सिलाई सीखने से पहले क्या करती थी?
2: कुछ नहीं, गांव में बच्चे पढ़ रहे हैं, गांव में खेती किसानी करते रहते हैं, गांव में कुछ नहीं है क्या, कुछ काम ही नहीं है, मजदूरी कहीं लगती नहीं है, बस बैठी है छाली घर में।
0: अच्छा, तो आपको क्यों लगा ये कि हमें सिलाई सीखना चाहिए, इससे हमें क्या फायदा होगा?
2: हमने इसलिए सिलाई सीखना चाहिए ताकि हमें दो पैसे मिलने लगे, कहीं बाहर न जाए, हम मजदूरी करने घर ही में रहे, बच्चों को संभाले, बच्चे स्कूल से पढ़े और गांव में रहे, घर में रहे, बस दो पैसे मिले, हमें दो पैसे आएंगे, हम बच्चों को पढ़ाएंगे, अपना खर्चा चलाएंगे, घर से बाहर न कहीं जाना पड़े।
0: बिल्कुल, जो आपकी सोच है बहुत अच्छी लगी। और साथ ही साथ हम ये कहना चाहते हैं कि अभी जो आप काम कर रही हैं, इसमें आपको कितना क्या मुनाफा, जिसको कहते हैं, कैसे हो जाता है?
2: वैसे हो जाता है, दिन में ज्यादा कुछ नहीं, वैसे फिलहाल हमने फीस सिले हुए है, दिन में एक दो बिलो सिले तो बन जाते हैं 60-65 रुपए दिन के हो जाते हैं, तो महीने पे जोड़ लो कितने होते हैं बस।
0: अच्छा जी, तो दिन के 60-65 रुपए आपके हो जाते हैं, तो आपको मतलब लगता है कि आपके परिवार में चलाने के लिए कुछ जो खर्चे होते हैं, थोड़ा बहुत मदद तो आपको मिलती होगी इससे?
2: हाँ, धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएंगे।
0: अच्छा अच्छा, आगे बढ़ाएंगे जी।
2: हाँ,
0: बिल्कुल,
2: भोपाल से भी आए थे अधिकारी लोग, बता रहे थे कि अभी करो फिर पैसे बढ़ाएंगे।
0: अच्छा, तो अभी मतलब जितना काम आप करती हैं उसका ही पेमेंट मिलता है कि महीना में जो पेमेंट होता है वो आपको मिलता है?
2: हाँ, ऐसे महीने में अभी मिला तो नहीं है, पर सुनवाई है अभी, तो ऐसे पुराने चीज थी ना, उन्हें सिलाए, जैसे पैंट थे, शर्ट थे, इन्हें अब नए कपड़े आए हुए हैं, हम बता रहे थान के थान आए हुए हैं, उनमें से बनाएंगे, जैसे टीकमगढ़ में आए हुए थे उनमें से कपड़ा सिलने के लिए, सीखने के लिए थी, काट के दिए थे उन्होंने
0: जी। कैसे मतलब बाहर से जो कपड़े आते हैं वो सिंपल थान के कपड़े रहते हैं, फिर आप लोग उसको डिजाइन करते हो यहाँ पे? अच्छा, फिर इसकी जो मार्केट है कहाँ पे, आप लोग खुद सेलिंग करते हैं या फिर जो कपड़ा आपको देते हैं वही लोग लेके जाते हैं, इसमें थोड़ा सा बताएं आप?
2: इसमें वही लोग हमें देते हैं कपड़ा, तो हम उसे सिल के फिर उन्हीं के पास छोड़ देते हैं, ताकि वे बाहर से कपड़ा लाते हैं, झांसी से सुनवाई है, झांसी से कपड़ा लाए हैं।
0: अच्छा, झांसी से कपड़ा आता है आपका और वो खुद ही आके आपके

0: ले जाते हैं तैयार किए हुए कपड़े?
1: हाँ, तैयार किए हुए कपड़ा ले जाते हैं।
0: अच्छा रूपा जी, बहुत बढ़िया काम है ये आपका तो। और साथ ही साथ ये आप अकेले सिलाई करती हैं या फिर आपके साथ और भी कुछ महिलाएं या लड़कियां?
1: 10-12 महिलाएं हैं, साथ में मिलके सारी करती हैं।
0: अच्छा, सारे लोग करते हैं सिलाई का, तो एक समूह में आप लोग काम कर रही हैं अभी?
1: हाँ, समूह वाली भी हैं, कुछ बिना समूह वाले हैं, समूह में मिलके काम कर रहे हैं हम लोग सारे मिलके।
0: जी, बहुत बढ़िया आपकी जो पहल है बहुत अच्छी लगी। और हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपका आगे का क्या प्लान है इसमें और क्या करना चाहती हैं, आपकी योजना क्या है इसमें?
1: आगे ऐसा है कि अपने धीरे धीरे करके सिलाई सेंटर के बाद फिर आगे अपने घर में भी कुछ कपड़ा लाओ, अपने घर में भी करे कुछ, ताकि गांव वालों को भी आए तो अपने 2 पैसे गांव के भी बचे और 2 पैसे अपने सिलाई सेंटर से भी बचे, तब परिवार का गुजारा हो सकता है।
0: जी जी बिल्कुल रूपा जी, आपने जो बातें हमें बताई है बहुत ही अच्छी लगी। इसमें हम एक चीज और थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपने ये कर रही थी सिलाई का काम आपने शुरू किया, तो क्या क्या परेशानी आपको आई? क्योंकि देखो कोई भी काम करते हैं तो परेशानी तो आती है।
1: परेशानी तो आती है वैसे भी।
0: जी, तो आपको ऐसी कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा?
1: हमें ऐसे जैसे हमें आता नहीं है तो कोई काम करना नहीं आता, जैसे शुरू शुरू में हमने सिलाई सेंटर में हमने पूछा कि कपड़ा कितना नाप का होता है, तो हमने पूछा सब मिलके, सर से पूछा या मैडम से पूछा जो हमें सिखाती हैं,
0: जी
1: उनसे उनसे पूछा हमने ये कपड़ा कितने मीटर का होता है। इसके बाद में तब हम आगे बढ़ते गए, धीरे धीरे हमें नॉलेज हुआ कि हम इन कपड़ों को ध्यान में रखें।
0: जी जी,
1: कल जाके हम बाजार में ले तो सके, अपन को लेना है तो कल बाजार में ले तो सके।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जब तक अपन को पूरी जानकारी खुद ना हो उस चीज के बारे में तो हम बाजार में जाके नहीं ले सकते।
1: नहीं ले सकते ना, फिर धीरे धीरे करके बस हमें अपने जैसे मशीन ली तो मशीन को भी ध्यान में रखना, ताकि कल बाजार खराब हो जाए कोई भी चीज तो बाजार में जाके हमें लेने पड़ जाए, या हम ना जाए दूसरों को बता तो सके उसके नाम वगैरह सब। तो बहुत सी परेशानी हुई ऐसे, हमें जानने में बहुत भी कठिनाई आई, हमने आगे चल के दूसरों आदमी से पूछा हमने की ये चीज क्या है,
0: जी
1: तब हमें जानकारी हुई।
0: जी रूपा जी, तो जब आपने सिलाई 1 महीने सीखी है तो आप 1 महीने में क्या परफेक्ट टेलर जिसको कहते हैं आप सिलाई करने लगी थी क्या, या फिर इससे ज्यादा समय लगा?
1: नहीं, किया अभी नहीं, नहीं 1 महीने में नहीं हमने किया
0: जी,
1: अभी चल रही, शुरू चल रही, अभी सीख रहे हैं अभी। अब कितने फिलहाल हमने 1 महीना कौन था, 2-3 महीने हो गए, 3 महीने गुजर गए।
0: अच्छा, 3 महीने आपके गुजर गए हैं, तो कुछ ना कुछ चीजें तो ऐसी होंगी ना जो आप परफेक्ट बना लेती हैं?
1: हाँ, वैसे सलवार है, कुर्ती है, ब्लाउज है,
0: ये चीजें आप बना लेती हैं?
1: हाँ, ये 2-3 चीजें बना लेते हैं।
0: अच्छा, इसमें आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है?
1: अब नहीं पड़ती, बस पहले पड़ती थी, अब नहीं पड़ती किसी की हेल्प।
0: अच्छा, तो गांव में जब आपने सिलाई सेंटर खोला है, मतलब खुला हुआ है, आपके गांव में इस चीज की मांग है ज्यादा से ज्यादा कि लोग आए और आपके पास कपड़ा सिलवाएं, या फिर सिर्फ आप बाहर का ही माल लेकर सिलती हैं?
1: नहीं, अभी तो वैसे बाहर का माल है, पर गांव में घर घर टेलर है।
0: अच्छा,
1: तो अभी तो कोई नहीं आता, अब आगे चल के जो आएगा देखा जाएगा, ना आएगा तो सब घर घर हो गए टेलर, घर घर अपना काम कर रहे हैं। तो हम सोच रहे आगे चल के हम अगर सीख जाए तो फिर हम कहीं शहर में जाके दुकान लगा सकते हैं, मशीन रख सकते हैं, ताकि हमें आगे बढ़े।
0: जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी प्लानिंग है आपकी रूपा जी, इससे हमारी और जो महिलाएं सुन रही हो उनको भी लगेगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं। जैसा कि आप पहले जब सिर्फ घर का ही काम करती थी, आप कैसे, आपके मन में ये दिमाग में आइडिया आया कि हम सिलाई करेंगे, आपको पहले से इच्छा थी क्या?
1: हाँ, पहले से थी, हम पहले से सोच रहे थे, पहले से हमने मशीन भी रख ली थी, तो हमारे पास कपड़ा नहीं आता था तो हम अपने घर के पुराने कपड़े काट कूट के अपने सिलते रहते थे, तो ऐसे धीरे धीरे करके आगे बढ़े। लेकिन बस दीदी एक बात और बता, कि हर गांव में ऐसा क्यों होता है कि आदमी आगे न बढ़ पे, अगर घर ही में है ना इंसान तो घर ही का घर ही में नहीं आगे बढ़ने देता, ये सबको भी आप बता दो। आप हमारी बात जैसे रेडियो पर चल रही तो सुन भी रहे हो गए
0: जी,
1: तो लेकिन क्यों घर घर में ऐसा होता है, इसका निश्चय आपको करना पड़ेगा वर्षा दीदी, इसको आगे बढ़ाओ कि घर घर में क्यों बुराई और सब अच्छी जो है एक घर में सब सारे मिलके चले।
0: जी बिल्कुल, आपके कहने का मतलब है कि महिलाएं बहुत सी ऐसी हमारी जो बहनें हैं इस समय रेडियो सुन रही हैं, उनको ये लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हालांकि उनको आता सब है।

0: लेकिन वो करना नहीं चाहती, या तो फिर उन्हें परिवार का सपोर्ट नहीं मिल पाता है।
1: नहीं बस यही बात है, परिवार का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाती है।
0: जी, तो आपके हिसाब से जब आपने सपोर्ट की बात की है परिवार की, तो आपको कितना सपोर्ट मिला आपके परिवार से?
1: हमें तो फिलहाल अभी कुछ भी नहीं मिला, हम तो परेशान है, इसीलिए हम सोच रहे कि आगे चल के हम समझा रहे हैं आगे हमें बढ़ाओ

0: ही नहीं दे रहा तो बताओ, ऐसे पता नहीं इंसान कैसे कैसे हो जाते हैं, साथ ही नहीं दे रहा है तो सोच रही आगे ना बढ़ जाए।
1: जी रूपा जी, आपकी जो बातें आप हमें बताई हैं, हमारी साथियों को बताई हैं, बहुत अच्छी लगी हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी बातें सुनकर हमारी जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, और वो कुछ करना चाहती हैं तो वो हमें जरूर बताएं हमारे नंबर पे, और अपनी आवाज हमें हम तक पहुंचाएं, ताकि हम भी दूसरों तक पहुंचाएं उनकी आवाज के। देखिए ऐसी भी महिलाएं होती हैं जो अपने लक्ष्य के लिए कुछ भी कर सकती हैं।
0: इसलिए सोच रहे हैं, लेकिन गलत सोच है बरसा बहन, गलत सोच है कि ताकि आगे सोचते कि ये बढ़ना जाए आगे, यही की यही रह जाए, सोच गलत है। आगे बढ़ने की कोशिश करते पर बढ़ने को आगे नहीं देते ना।
1: देखिए रूपा जी, एक कहावत आपने सुनी होगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए कोशिश करते रहना चाहिए। अपने मन को कभी कमजोर मत समझिए, खुद को किसी से कम मत समझिए, आप सब कुछ कर सकती है, बशर्ते हिम्मत मत हारिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। जी रूपा जी, चलते चलते एक लास्ट सवाल है आपसे, जाते जाते हमारी जो बहनें हैं इस समय आपको सुन रही हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं?
0: उनके लिए बस यही, कोशिश करते रहे, हार ना माने, बस आपने जो कहा बस हिम्मत बढ़ाते रहे, पीछे ना हटे। लड़का लड़की कहते हैं, लड़का लड़की एक समान
1: जी
0: बराबर है, लेकिन हम भी वो भेदभाव नहीं करते कि लड़का लड़की एक समान नहीं है, है।
1: जी बिल्कुल रूपा जी,
0: आगे बढ़ते रहे बहन भाई, सब मिलके चलते रहे, और घर का और बाहर का भी जो अपने करने में मदद दे सके कोई तो उनसे और संपर्क करें, हम भी आपको बता देंगे।
1: जी बिल्कुल रूपा जी, आपने हमें इतनी अच्छी बातें बताई, इतना समय हमें दिया, हमारे साथियों के लिए इतना वक्त निकाला कि आप किस तरह से काम कर रही हैं, सिलाई सेंटर आपका कहाँ है, और बहुत ही खास बात जो हमारे आज के कार्यक्रम में है कि आप इतनी दूर की होने के बावजूद भी आपको लगा कि हम रेडियो बुंदेलखंड में अपनी आवाज को दे, ताकि महिलाएं जो सुन रही हैं उनको थोड़ा सा उत्साह प्रेरित हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अच्छी बात, धन्यवाद,
1: नमस्कार।
2: काय वर्षा, तुम तो इतनी नौनी अच्छी बातें कर लेती हैं, और रूपा जी ने कितने अच्छे अनुभव आपको बता दिया, आपको शायद हमें देखा पहले से बिल्कुल पता हो ये के रूपा जी बात करें और व्यवसाय के बारे में बताए।
1: हाँ,
2: हम सोच ही रहते हम हमें आज कौन सा व्यवसाय दें, कौन सा व्यवसाय दें, और हमारी रूपा बहन ने बताई रही कि हमने जो हम अनुभव जो राय है उनके, कैसे ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि कछु भी चीज को यदि अपन व्यवसाय को स्टार्ट कर रहा है, शुरुआत कर रहा है, तो उसके लाने ट्रेनिंग की जरूरत पड़ा थे, उसके नाना मार्केटिंग की जरूरत पड़ा थे। ये सारी बातें जो रूपा जी ने अनुभव अपने बताए हैं कि उनने कैसे कैसे एक एक सीढ़ी खो रख के आज आगे बढ़ गई है, और उनने किस तरीके से सिलाई को काम सीख के आज भी अपनों परिवार को भरण पोषण कर रहे हैं। वाह, धन्यवाद।
1: अरे मनीष भज्जा, सबसे बड़ी बात पता का हैगी, जा हैगी कि अपन और सीख तो ले थेंगे, मतलब जैसे कहता हूँ सुनी क्या रे होते जो चीज से करे हमें तो सीख भी जाना, सीख भी बहुत है ना, नई शुरुआत में तना एक जाबे को चस्का लगो रहते है, सो चले तो जा सीख भी, लेकिन वो काम को कैसे हम अपनो व्यवसाय बना सकत, कैसे उसे अपनी आजीविका चला सकते, जो बहुत कम लोग होते जो सीख पाएंगे। तो काहे कि रूपा जी ने जो हमें बताई थी कि टीकमगढ़ में जो आरसीटी सेंटर चला थे वो उनके माध्यम से कम होते ज्यादा नहीं तो 30-40 औरतें उस समय पे ट्रेनिंग उनके संगे ले रही थी, लेकिन अगर बात करें कि उनको कंटिन्यू आगे कीने करो तो उनमें से बहुत से बहुत 10-15 महिलाएं ऐसी हैं थी जो कि अपने घरे जब वापस गई और भी सिलाई को काम कर लगी हैंगी। तो कैबी को मतलब जो है वो कि कोनो भी काम अगर अपन सीखत हैंगे और करवे के उद्देश्य से अगर सीखत हैंगे तो उनको जरूर सीखो, क्योंकि आपने वो एक महीना या चार दिना जो भी आपको समय हतो वो समय आपने वो ट्रेनिंग में दो है और वो समय आपको बहुत कीमती हतो, महत्वपूर्ण हतो। तो इसे भैया अपन अपनी आजीविका के बारे में तो सोचते हैंगे, वो सोचवे के संगे अपन कैसे एक छोटे सो काम करके एक बड़ो सो मुनाफा कमा सकत हैंगे। इतने अगर अपन बात करें मनीष भैया के अपनी जो बहनें होती खास तौर से भी दो चीजन को ज्यादा पसंद करती हैं, ये दो या तीन चीजन को बहुत से बहुत, एक तो हो जाते हैं वो कि सिलाई को काम, दूसरो ब्यूटी पार्लर, तीसरो उन्हें कढ़ाई बुनाई को काम अगर अच्छा लगा थे वो तो वो भी वे करती हैंगी। तो महिलाएं अक्सर इन दो

0: चीजन पे या तीन चीजन पे काया टकती। हम तो कहते आप और भी बेहतरीन काम कर सकती, जैसे अचार बरी को काम है, अगर आप बहुत अच्छी तरीका से अचार बरी पापड़ है और या फिर जी मसाले होते ही, अगर आपको जो ही बनावो आते हो और बहुत अच्छी तरीका से आप बनावो जानती हैं, तो उनके छोटे छोटे पैकेट बना के आप मार्केट में एक अपनी खुद की ब्रांड आप तैयार कर सकती हैं, ये अगर आपको अच्छी तरीका से बनावो आते हैं। तो केवल दो ही चीजन पे ना अटको कि हम केवल सिलाई या ब्यूटी पार्लर करेंगे, आप और भी ज्यादा काम कर सकती हैं और कई प्रकार के काम आप कर सकती हैं।
1: अरे ज्ञान की देवी, अब तो
0: हाँ
1: नक रुक जाओ और हमारे साथ ही अनखो तनक सांस लेन दो और जो लोकगीत सुनन दो अनखो, कैसे इतनी ज्ञान ज्ञान ज्ञान दे चली जाओगी। तो हमारे साथ ही कह के हाओ ज्ञानी बाबा लोग आ गए हैंगे
0: हाँ
1: और
0: मतलब
1: ज्ञान
0: तुम
1: दे
0: तो
1: के।
0: मैं बोलन दो सो कछु नहीं है,
1: नहीं नहीं
0: तुम
1: नहीं
0: बोला
1: अपन
0: तराओ।
1: एक बढ़िया अपन भी थोड़ा विराम ले लेते हैंगे और अपन सुनवाते हैं अपने श्रोता साथियों को जो नौ नौ सौ गजल खो, अपन गजल खो सुनेंगे और गजल के बाद साथियों फिर ये तनक आपकी हमारी मुलाकात जा कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में।

0: हमारे सब श्रोता साथी अब हरीश दर्द जी की आवाज में बढ़िया सी गजल को सुन रहे थे, और अब हमें लगा थे वो मनीष भैया जो ज्ञान तो तुम्हें दे सका थोगे, कहे गया हम बोले सो फिर कहते कि ज्ञान दे रही
1: नहीं, अब हम भी ज्ञान नहीं देंगे,
0: नहीं
1: साथी
0: दो।
1: अनखों बस पूछ वो चाह रहेंगे कि जो कार्यक्रम हम लोग बना के आप लोगों तक पहुंचा रहेंगे, तो कार्यक्रम आपको कैसे लग रहेंगे? कैसे जब तक आप लोगों की प्रतिक्रिया नहीं आए, कैसे एक जो मंच है वो रेडियो बुंदेलखंड के ऐसा मंच है वो जहाँ पर हमारे श्रोता साथी अपनी बात को रख सकते हैंगे और अपनी बात दूसरे तक पहुंचा भी सकते हैंगे। तो अपन ये चीजें आपको बताते हैंगे, जो बातें आपको बताते हैंगे, चाहे वो खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हो, चाहे युवा साथियों को कैरियर से जुड़ी बातचीत हो, चाहे वो आजीविका से जुड़ी बातचीत हो, तो ये सारी चीजें जो रहेंगी, सारी बातें जो रहेंगी, उनको यदि हमारे श्रोता साथी यदि मैसेज भी करें या फिर व्हाट्सअप करें या फिर फेसबुक पे भी हम और रहेंगे, और फेसबुक पे भी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं जो कार्यक्रम हम चला रहे हैं उनके बारे में। और खास तौर पर आज को जो कार्यक्रम हमने जय के लाने बना है वो जैसे रूपा जी ने अनुभव दिए हैंगे, तो आप भी अपने अनुभव साझा कर सकते हैंगे। यदि आप सफल व्यवसायी हैंगे, आपको लग रहा होगा कि आपको ट्रेनिंग की जरूरत है या फिर आपको लग रहा होगा कि आपको मार्गदर्शन की जरूरत है, तो आप हमें कॉल करके बता सकते हैंगे।
0: बिल्कुल यही पे कह रहे हैं, और हम वही सोच रहे थे कि ज्ञान की बात खुद कर रहे थे, और देखो इतनो मना करत करत आखिर में ज्ञान दे ही दो। तो साथियों सीधी सी बात नहीं कर सकते कि भज्जा अब हम जाते हैं ये कार्यक्रम से, और आपको अगर कोई संपर्क करने हैं तो लाना हमारा नंबर जो है वो।
1: हाँ, और साथ ही जरूर फोन लगाएं या फिर फेसबुक पे फॉलो करें या फिर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें।
0: अरे मनीष भैया सुनो सुनो सुनो सुनो, तुमने ऐप के बारे में काहे नहीं बताओ? और
1: ऐप हमारे श्रोता साथियों के पास यदि
0: जानत
1: है,
0: है
1: नहीं, जानत तो हैंगे, और हम एक बार फिर से कह वो चाहते हैंगे कि रेडियो बुंदेलखंड आप इंटरनेट पे भी उपलब्ध है वो, जहाँ पर रेडियो नहीं पहुंच पा रहा है वो रेडियो सेट के माध्यम से, वहां पे इंटरनेट की इस दुनिया में आप सभी का स्वागत है। रेडियो बुंदेलखंड वहां भी उपलब्ध है वो, और आप सिर्फ गूगल प्ले स्टोर पर जाने हैं वो, और प्ले स्टोर पर रेडियो बुंदेलखंड जैसे ही आप सर्च करोगे तो आप रेडियो बुंदेलखंड का लोगो उपलब्ध पाओगे, बाखों डाउनलोड करो और चाँद जिते बैठ के हैं, यदि आपके पास इंटरनेट है वो चाँद उन छिड़िया बैठ के सुन सकते हैंगे और अपनी ज्ञान की बात अनखो सुन सकते हैंगे।
0: तो केवल साथियों ज्ञान की बातें सुनबे नहीं, मनोरंजन की बातें भी सुनबे के लाने। आप डाउनलोड जरूर कर बे ऐप, काहे कि अपने श्रोता साथियों की हर बार जैसी शिकायत रहती कि रेडियो के नेटवर्क नहीं आ रहे, तो एक बहुत अच्छा माध्यम है कि आप जो है अपने फोन में प्ले स्टोर पे जाके ऐप को डाउनलोड कर लेवे रेडियो बुंदेलखंड को ऐप, और फिर अपन जिते चाहे बैठ के ई कार्यक्रम को सुन सकते हैं सुबेरे 7 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। तो आप भैया देखो ज्यादा ही टाइम हो रहा हो, काहे कि अब हमें चलन दो, और फिर ये आपसे मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लाने नमस्कार।
1: नमस्कार।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का आपके अपने रेडियो दोस्त मनीष कार्यक्रम हमाई गांव हमाई सरकार कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि हमाई गांव हमाई सरकार कार्यक्रम में हम पंचायत पर बातचीत करते हैं, उन ग्रामों पर बातचीत करते हैं, ग्राम के विभिन्न ढांचा जो हम जिसे पंचायत कहा जाता है उन पर बातचीत करते हैं। ग्राम सभा हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है और ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का क्या महत्व है, इसके बारे में भी बताया गया था। आपको बता दें कि हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया था कि छोटे छोटे बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे। अभी तक लोगों को दोस्तों पता नहीं है कि आखिरकार पंचायती राज व्यवस्था क्या है, कब शुरुआत इसकी हुई है, हमारा पंचायत में कितना योगदान है, ये अभी तक किसी ने नहीं समझा है। और लोग बस हवा हवा में बात करते रहते हैं कि हमारी पंचायत है, सरपंच हमारा है, काम नहीं कर रहा है। अरे भाई, उस बातचीत को आप समझिएगा तब आप कहिएगा कि ये पंचायत राज व्यवस्था है, इसमें ये हमारा अधिकार है, ये नियम कानून है, इस बात को गौर करिएगा। अभी तक तो हवा हवा में बात होती है कि साहब मध्याह्न भोजन नहीं बट रहा है, भाई साहब हमारे गांव में नाली की समस्या है, आप उस पर प्रकाश तो डालिएगा। आपको यही पता नहीं है कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम हमारी गांव हमारी सरकार कार्यक्रम में इसी बिंदु पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे मन में खटक रहा था कहीं ना कहीं कि अभी तक लोगों को अपनी जिम्मेदारी का अधिकार के बारे में पता नहीं है, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पता नहीं है, सिस्टम क्या होता है ये भी पता नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम तालुका और जिला आते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था का अस्तित्व में रही है। आधुनिक भारत में पहली बार तत्कालीन जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सुखड़िया और मुख्य सचिव भगत सिंह मेहता थे। भगत सिंह मेहता को राजस्थान में व बलवंत राय मेहता को भारत में पंचायती राज का जनक भी माना जाता है। दोस्तों, इस पर हम बातचीत जरूर करेंगे क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था एक बड़ा बिंदु है, बड़ी समस्या है, लोगों को यही पता नहीं कि पंचायती राज व्यवस्था। आइए हम हमारे एक्सपर्ट चंदन जी से आज हम जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है, कौन सा अधिनियम है, इसमें हमारा क्या अधिकार है। तो आइए हम पंचायती राज व्यवस्था पर चंदन जी से बातचीत करते हैं कि आखिरकार पंचायती राज व्यवस्था क्या है, लेकिन विराम के बाद।

0: अभियान चलाना है।
1: सेवा भावी निस्वार्थ जुन,
0: सेवा भावी निस्वार्थ जुन,
1: सरपंच पंच

0: इलेक्शन वो हमको अपनाना है।
1: पंचायत से संसद तक,
0: पंचायत से संसद तक
1: बहनों को पहुंचाना है। आओ बहनों हम सबको ऐसा अभियान चलाना है। आओ बहनों हम सबको

0: सकती हूँ सरपंच, तुमको साथ निभाना है।
1: मैं बन सकती हूँ सरपंच, तुम सबको साथ निभाना है।
0: मैं बन सकती हूँ सरपंच, तुम सबको साथ निभाना है।
1: मैं बन सकती हूँ सरपंच, तुम सबको साथ निभाना है।
0: घर से पंचायत तक,
1: घर से पंचायत तक,
0: हम सबको मिलकर जाना है। या

0: ऐसा अभियान चलाना है, आओ बहनों हम सबको ऐसा अभियान चलाना।
1: गांव में काम करवावे की जिम्मेदारी कौन की?
2: पंचायत।
1: गांव में किते किते और का काम हुज्जे जो तय को करे?
3: ग्राम सभा।
1: सोशल ऑडिट की जिम्मेदारी कौन की?
2: ग्राम सभा की।
1: मैं हूँ जा गांव की सरपंच, रोजगार गारंटी से जुड़ी पंचायत और ग्राम सभा की जिम्मेदारी को मैंने समझो है और आपने।
4: रेडियो बुंदेलखंड द्वारा जनहित में जारी।
5: चंदनी, हमारे साथियों को बताइएगा कि चूंकि बातचीत हम कर रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था पर, तो पंचायती राज व्यवस्था आखिरकार क्या है, इसके बारे में जानकारी दीजिएगा।
6: तो हमारा जो पंचायत राज अधिनियम है, पंचायत राज अधिनियम में लोगों को ये अधिकार दिए गए हैं, खास करके जब 73वां संविधान संशोधन हुआ पंचायती राज में, तो उसके बाद ये लोगों को अधिकार दिए गए जो वो अपने गाँव की योजना पंचायत के साथ मिलकर खुद तैयार करें, अपनी आवश्यकताओं को खुद समझें, अपनी आवश्यकताओं के आधार पर उसके समाधान की रणनीति तैयार करें। ये तो एक कानूनी पक्ष है जो हमें पंचायत के कानून के द्वारा प्रदान किए गए पंचायतों को, ग्राम सभा के लोगों को। लेकिन पहले ये समझना पड़ेगा जो सूक्ष्म स्तरीय नियोजन की या विकेंद्रीकृत नियोजन की बात हम तब करें, पहले ये समझ लें जो नियोजन क्या है, पहले नियोजन कहते किसको है। नियोजन आमतौर पर किसी भी काम को करने से पहले जब पूरी तरह उसके बारे में सोच विचार लिया जाता है, सलाह मशविरा करके जब जो निर्णय लिया जाता है और उस काम को करने की रणनीति या तरीके सोचे जाते हैं, उसे ही नियोजन कहते हैं।
5: क्योंकि आपने बहुत अच्छी बातचीत बताई है, मन में एक हमारे सवाल चल रहा है कि ये नियोजन की प्रक्रिया है वो क्या है, इसको विस्तार से हमारे साथियों को बताइएगा।
6: नियोजन या योजना बनाने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति जो हमारा ग्राम सभा का समुदाय है या ग्राम सभा के जो लोग हैं या पंचायत के जो लोग हैं जिनको हमने चुना है, वो पहले खूब सोच विचार करे, काम करने के नए नए तरीकों पर विचार करे, उसकी अच्छाइयां बुराइयों को सोचे और तब जाकर समाधान करने के निर्णय पर पहुंचे जिससे उसका सही क्रियान्वयन हो सके। और अगर आप उसको समझें तो ऐसे कह सकते हैं जब हम वार्ड ग्राम पंचायत के स्तर पर जब छोटी छोटी योजना बनाते हैं उसे ही सूक्ष्म स्तरीय नियोजन कहते हैं। मतलब बहुत स्पष्ट है, सूक्ष्म मतलब छोटा और नियोजन मतलब योजना तैयार करना। जब हम छोटी योजनाओं को तैयार करते हैं छोटे छोटे स्तर पे तो उसे सूक्ष्म स्तरीय नियोजन कहा जाता है। इसमें एक बहुत आवश्यक चीज ये है जो हम योजना को तैयार करने से पहले हम देखते हैं जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन क्या है और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर जो हमारे स्थानीय लोग हैं, जो गांव ग्राम सभा के लोग हैं, उनके साथ हम उनकी सहभागिता से चर्चा करते हैं। चर्चा के बाद उस परिस्थिति का विश्लेषण करते हैं योजना के निर्माण के लिए और क्रियान्वयन, मतलब उस योजना तैयार होना ही बड़ी बात नहीं है विकेंद्रीकृत नियोजन में या गांव पंचायत के स्तर पर जो छोटी योजनाओं तैयार करते हैं, इसमें हम जरूरी पक्ष ये हो जाता है जो योजना तैयार करने के बाद उस पे कैसे काम किया जाए, देखरेख कैसे की जाए, उसमें जिम्मेवारी कैसे तय की जाए, ये एक बड़ा जरूरी चीज है। ये जो नियोजन की प्रक्रिया है ये सामूहिक तौर पे जो पंचायत के लोग हैं या ग्राम सभा के लोग हैं इस तरीके का विश्लेषण से उसमें निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ती है। वो बैठ के लोगों के साथ बातचीत करते हैं किस आधार पे कहाँ पहुंचना है, ये निर्णय तय करते हैं, तो एक तरह से ये उनकी क्षमता भी बढ़ाती है गाँव के लोगों के साथ, जो वो अपने स्थानीय परिस्थिति स्थानीय स्थितियों को सोचने के लिए थोड़ा समझें चीजों को। जो हमारी एक मजबूत इकाई है, जो एक ताकतवर इकाई है गांव के संदर्भ में देखें या ग्रामीण संदर्भ में देखें, और पंचायत एक ऐसी इकाई है जिसको एक कानूनी अधिकार प्राप्त है। अगर आप देश के स्तर पे देखते हैं तो हमारे पास संसद है, राज्य के स्तर पे देखते हैं तो हमारे पास विधानसभा है, अगर आप गाँव के स्तर पे देखते हैं तो हमारे पास पंचायतें हैं। इसे कानूनी अधिकार प्राप्त है जो ये एक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। इस परिस्थिति में खास करके एक संस्था के संदर्भ में देखें तो पंचायत जो है वो विकास के लिए योजना बनाता है, लेकिन विकास की योजनाएं ऐसी होती है जो आपकी सामाजिक न्याय एवं समानता पर आधारित हो, मतलब सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करते हुए पंचायत को विकास की योजना बनानी पड़ती है। इसमें गाँव के स्तर पे जो समस्याएं हैं, जैसे आप बोल रहे थे जो नाली की समस्या है, स्कूल की समस्या है, लोग मानते हैं, लोगों का ये सोचना है जो समस्याएं हमारे पास जो है उसके समाधान करना जो है वो सरकार का काम है, जबकि पंचायती राज व्यवस्था कानून ये कहता है जो गांव के स्तर पर जो पंचायतें हैं या पंचायतें हैं वो स्थानीय सरकार के रूप में काम करती है, वो एक वहां की लोकल सरकार है, वो तो लोकल सरकार है। और इसके लिए पंचायतों को तीन चीजें दी गई है जो बराबर एक विषय बनता रहता है। अगर आप देखें तो हमारे पास पंचायत में काम करने वाले लोग हैं, उनके कानूनी रूप से उनके काम तय किए गए हैं, जो पंचायतों क्या करने हैं, उन काम को करने के लिए उनको लोग दिए गए हैं और लोग के साथ उनको पैसे भी दिए गए हैं जो काम करे। आमतौर पर किसी भी काम को करने के लिए तीन चीजें जरूरत है, आपके पास अधिकार होने चाहिए, आपके पास लोग होने चाहिए और आपके पास पैसे होने चाहिए। ये तो ये तीनों चीजें अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, जो पैसे की बात है, अलग अलग योजनाओं से माध्यम से पंचायतों को दिए गए हैं। कुछ ऐसे पैसे दिए जाते हैं जो पंचायतें अपना स्वतंत्र निर्णय ले गांव के लोगों के साथ बैठ के। तो इस थोड़ा सा मानसिकता को बदलने की जरूरत है, जो स्थानीय सरकार है, जो पंचायतें हैं, स्थानीय समस्याओं के निराकरण वहां के लोगों के साथ मिलकर वो करे। ये पंचायत, ये जो समस्याएं हो सकती है वो किसी विभाग के कर्मचारी से उसका मार्गदर्शन लिया जा सकता है और पंचायतें अलग अलग मुद्दे पे योजना बना के अलग अलग विभागों को भेज सकती है। उदाहरण के लिए आपने कहा था जो विद्यालय की समस्या है, तो विद्यालय की समस्या है तो इससे संबंधित योजना बना के शिक्षा विभाग को भेजा जा सकता है जिले के स्तर पे। पीने की पानी की समस्या है, इसको लेके हमारे जो योजना बना सकती है पंचायत, योजना बना के आपको पीएचईडी विभाग को भेज सकती है। आपके पास शौचालय की समस्या है, शौचालय की समस्या को लेकर सरकार ने इतना बड़ा समग्र स्वच्छता अभियान चला रखा है, उसको लेके बात की जा सकती है।
5: बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी, आपने बहुत अच्छी हमारी जानकारी पंचायती राज व्यवस्था को और एक एक बिंदु पर प्रकाश डाला जो हमारे साथियों को बड़ी महत्वपूर्ण लगी होगी। और सोचने वाली बात यह है कि अब जाके अब पता चला कि पंचायती राज व्यवस्था में कहां पर समस्या है, कहां पर लोग अपना निर्णय लेने में हिचकिचाते हैं। चंदन जी आपसे फिर मुलाकात होगी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बातचीत हमारे श्रोता साथियों को दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: गांव में काम करवावे की जिम्मेदारी कौन की?
2: पंचायत की।
1: गांव में कितने कितने और का काम हुजे जो तय को करे?
3: ग्राम सभा।
1: सोशल ऑडिट की जिम्मेदारी कौन की?
2: ग्राम सभा की।
1: मैं हूँ जा गाँव की सरपंच, रोजगार गारंटी से जुड़ी पंचायत और ग्राम सभा की जिम्मेदारी को मैंने समझो है और आपने
4: रेडियो बुंदेलखंड द्वारा जनहित में जारी।
5: एक बार फिर से पुनः दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी गांव हमारी सरकार। आप तो दोस्तों समझ गए होंगे, आप एहसास हुआ होगा, अभी तक साथियों को ये पता नहीं, उनने सोचा कि ग्राम सभा में प्रस्ताव डाला और बस काम हो गया है। ये साथियों अब हमें जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि बस एक ही जिम्मेदारी समझते हैं कि बस हम वोट डाल दिया, हमने सरपंच गठन कर दिया, अब सरपंच ही सारा काम करेगा। नहीं दोस्तों, अब हमें जागरूक होना होगा तभी हमारे गांव का विकास होगा, क्योंकि समितियां इसलिए बनाई जाती हैं, निगरानी समिति हो, हर किसी कार्य योजना कब तैयार की जाती है, ग्राम सभा में जब कार्य योजना तैयार की जाती है, जैसे चंदन जी ने अभी इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया कि कार्य योजना तैयार करना एक बात नहीं है, उसकी जिम्मेदारी लेना ये बहुत बड़ी बात रहती है। क्योंकि हम सोचते हैं कि कार्य योजना अब तैयार हो गई है, हमने नाली का प्रस्ताव दे दिया है, अब बन जाएगी, अब उसमें ये देखना है हमारे पंचायत में कितना पैसा है, पंचायत में कैसे कौन क्रियान्वयन करेगा, कैसे रहेगा, कौन निगरानी इसकी करेगा, ये सारी चीजें, ये जिम्मेदारी हमें स्वयं लेनी चाहिए, तभी हमारे गांव का विकास होगा। एक आदर्श गांव आप दोस्तों किसे समझते हैं? एक आदर्श गांव वही गांव होता है जहां पर हम खुद सरपंच के साथ मिलकर जिम्मेदारी खुद निभाते हैं, चाहे वो किसी भी स्तर पर जिम्मेदारी हो। आप जब बैठक होती है तब आप बताइएगा कि ये काम हम देखेंगे, आप नाली का अगर बात की जाए, नाली का काम ये हम देखेंगे, जल का काम ये समिति गठित कर दी है, ये काम देखेगा, तब काम में मजा आता है और पंचायत भी अच्छी तरीके से चलती है। अब अभी तक क्या होता है, सरपंच हमने बना दिया है, सरपंच ने प्रस्ताव डाल दिया है, वो भी गोपनीय तरीके से प्रस्ताव डाल देते हैं, जब भी ग्राम सभाएं होती ग्राम सभा प्रस्ताव डाल के बस तैयार हो जाता है। अब क्या मटेरियल लगा रहे हैं, कौन सा मटेरियल वो इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसा मटेरियल लगा रहे हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो ध्यान में रखना चाहिए, ये नहीं सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि सरपंच ने डलवा दी है। एक अच्छा नागरिक की यही पहचान दोस्तों होती है कि हमें उस चीज के प्रति जिम्मेदार लेना चाहिए, उस कार्य के प्रति जिम्मेदारी लेनी चाहिए, हमें अपने आप को स्वयं इस चीज के लिए सरपंच को कहना चाहिए कि ये हम जिम्मेदार हैं और इसका हम क्रियान्वयन करेंगे। दोस्तों हम कार्यक्रम के माध्यम से बताते चले जाते हैं कि हमें किस तरीके से काम करना है। पंचायत में आपकी भूमिका बहुत बड़ी रहती है, चाहे वो सदस्य के रूप में हो या फिर उप सरपंच के रूप में हो या सरपंच के खुद रूप में हो। अब क्या होता है कि सरपंच गठित कर देते हैं और हम बात करते हैं कि हमारे घर में शौचालय नहीं है साहब, हमारे घर में शौचालय बनाइए, आप खुद जिम्मेदारी लीजिएगा कि जब ग्राम सभा होती कितने शौचालय बन गए हमारे ग्राम में, अब कितने शेष है, नाली की क्या समस्या है, खंजड़ा की क्या समस्या है, ये सारी समस्या देखते हुए तभी हमें अपने कार्य को बढ़ाना होगा और साथ में ग्राम के विकास में अपना साथ एवं सहयोग देना होगा। साथियों बस इतना ही हमारे इस कार्यक्रम हमारे गांव हमारी सरकार में, आपके हमारी फिर पंचायत पर बातचीत होगी अगले कार्यक्रम में। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए।

दीजिएगा। हमारा पता है, यदि चिट्ठी के माध्यम से आप बताना चाहते हैं तो पता लिख लीजिएगा। हमारा पता है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तिगेला के पास ओरछा, और हमारा फोन नंबर है 94-25-14-17-26। तो आपके रेडियो दोस्त मनीष लेते हैं इस कार्यक्रम हमारी गांव हमारी सरकार कार्यक्रम से जाने का। आपके हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा गीत। नमस्कार।

साजा बुलाते हैं।

0: हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब है, उसको किस अंदाज में हमारी एक कोशिश है। गंगा जमुना की लहरों में प्यार के धारे बहते हैं,
1: गंगा जमुना की लहरों में प्यार के धारे बहते हैं।
0: हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुल कर सब रहते हैं,
1: हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुल कर सब रहते हैं।
0: होली ईद दिवाली मोहर्रम मिलजुल कर सब करते हैं,
1: होली ईद दिवाली मोहर्रम मिलजुल कर सब करते हैं,
0: होली ईद दिवाली मोहर्रम मिलजुल कर सब करते हैं। झंडा तिरंगा हाथ में लेके

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप इबीरा अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आप सब जनन के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। और साथियों, विधा बुंदेली कार्यक्रम में आज सुने अपन विधा कछियाई गीतन को और इनको आनंद लें। सो दोस्तों, आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। सो दोस्तों, दिन न करत भाई अपन ई कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊ थे और सुनत हैं भोले राम कुशवाहा जी के स्वर में इन कछियाई भजनन को। सो आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। सो अब आओ सुनत हैं भजन को।

एक डार पे तीन डरे झूला और चीनो सखी अपने दूल्हा। देखो दोस्तों, अपन सब जन ने जो भजन सुनो है, ई भजन में अपन ने सुनो है भोले राम कुशवाहा जी के गाय भाई भजन को। अब आओ सुनत है फिर से नहीं कि गाय भाई भजन को। सो आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।

बिजनार सतावे के मैया मोए जा बिजनार सतावे। अब आओ आगे सुनते हैं कि जीवन नैया भूला नाथ हमारे। देखो कितना प्यारा भजन अपन अब आगे सुन।

गोरी नैया पार लगा दो भोले बाबा लहरी। देखो कितना प्यारा जो भजन सुनो है, इसको आनंद लाओ। आप दोस्तों आओ एक क्रम में फिर से सुनते हैं गंगाराम भैया जी के गाये भय सुर में एक कछिया भजन को, कि मथुरा से दूती आई रे सभा के बीच में। आओ सुनते हैं गीत को।

मोहन बैठ कदम की डाली मुरलिया मधुर बजा मेरे। देखो भैया, गंगाराम भैया ने बहुत ही अच्छी तरीके से गीत को गा के सुनाओ है। अब यही गीत के संगे संगे फिर से सुने थे अपन भैया भोले राम कुशवाहा जी के गायब है गीत को।

अरिया कैसे चढ़ो लाला अबे उमर मोरी बारी। देखो कितनो प्यार जो कछिया भजन भैया भोले राम कुशवाहा जी ने गा के सुनाओ है, इमे अपन सब जन ने सुनो है ये, और इको आनंद लो जो गारी की तर्ज में भैया जी ने गाओ है। अब एक के संगे संगे आज के कार्यक्रम से आपके दोस्त माता दिन जी को जावे को समय हो रहा है, सो अपने दोस्त माता दिन जी को तो दो कार्यक्रम से जावे की अनुमति, अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात यही कार्यक्रम में यही बेरा पे, जब तक के लाने नमस्कार।

की अरे पद भेड़ में बिज गई आज आधारू में लटकी ठाणी ए ठाणे अप थाने अपनी लई ठाने।

0: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

बनाया गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: बड़ा नंबर है ना, पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
1: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मोर नाम मोनिता रानी दास, थाना बागबर, डिस्ट्रिक्ट बरपेटा। तो अमर धान खेती बालू खेती नष्ट है, नष्ट होने तो जो पैसा दे तो ना अमर लाभ है, बाकी खेतियों के कलते लाभ तो पाने आम जन पालू
2: खरीफ फसल बीमार बाबे शीघ्र पंजीकरण कराओ।
3: बैंक शाखा बीमा कंपनी कृषि ऋण समिति जनसेवा केंद्र सहिते जोगाजोग करक।
2: फसल बीमा सम्बन्धे तथ्य पातिर बाबे हेल्पलाइन नंबर 144 47 लई कॉल करक।

गलियों गलियों फिरता हूँ, कब से जब से इस हसीना ने, जब से इस हसीना ने मुझको आंख मारी।

0: जे देवी है तो हम भी पुजारी से कम नहीं है, और पुजारी हुए जब तो अगरबत्ती खोन से देवी के लगा प्रसन्न हुई है देवी कहीं ना।
1: एक तरफ ये देवी है दूजा मैं पुजारी हूँ।

0: कि ये चांद तू इतना मत चमक, ये चांद तू इतना मत चमक, मैंने भी कई चांद देखे हैं और तुझ में तो दाग है, लेकिन मैंने भी दाग देखे हैं।
1: लेकिन कहना है हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, जज्बात की जिंदगी हम जिया नहीं करते, वो तो तुम हो जनाब, वो तो तुम हो कि तुम्हें मैंने अपना दिल दे दिया, वरना किसी को अपना दिल दिया नहीं करते।
0: तो कहना है आपसे मैडम कि हर शख्स यार नहीं होता, हर शख्स यार नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता, ये तो दो दिलों के मिलने की बात है, वरना सात फेरों में भी प्यार नहीं होता।
1: लेकिन आजकल ये तो होने लगो, बताए कैसे यारो मोहब्बत मत करना, यारो मोहब्बत मत करना, क्योंकि मोहब्बत में हर चीज पराई होती है। यारो मोहब्बत मत करना, प्यार से प्यार मत करो, जब तक प्यार तुमसे प्यार ना करे, और जब प्यार तुमसे प्यार करे तो जनाब तुम प्यार से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि प्यार किसी और प्यार से प्यार ना करे।
0: जब सत्य कहना है हमने इतना प्यार करो, मालूम कितना
1: कितना

ना, फिर उसने भगवान हनुमान ने आई थी, तो भगवान ने क्या उसके आंचल से जहर लगे थे, जहर पिलाने के लिए कि मर जाए भगवान। तो क्या बोले, हंसे हंसे

0: मेरा नाम प्रमोद कुमार कुशवाहा है, सरपंच ग्राम पंचायत जखनगांव, जनपद पंचायत निवाड़ी। 15 अगस्त एवं रक्षाबंधन की मेरी ओर से बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं सभी लोगों से बोलना चाहूंगा कि अधिक से अधिक पर्यावरण के लिए पेड़ लगाएं और उनको संरक्षित करें।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड सुनने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज हम चुरारा में उपस्थित हैं और यहाँ पर ग्राम पंचायत चुरारा के सरपंच हमारे साथ उपस्थित हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इस बार हम लोग पर्यावरण को बचाने के लिए क्या काम कर रहे हैं। सबसे पहले सर परिचय देते हुए शुभकामनाएं।
2: नमस्कार सभी ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को, और 15 अगस्त की एवं रक्षाबंधन की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं पर्यावरण के संबंध में सभी को यही चाहता हूं कि 15 अगस्त और रक्षाबंधन पर सभी लोग पर्यावरण पर विशेष ध्यान दें, साफ सफाई का, और सभी लोग अच्छे से रक्षाबंधन और 15 अगस्त मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। और सर इसमें एक चीज और जानना चाहेंगे कि इस बार आपने चूंकि अपनी पंचायत को लेकर क्या संकल्प किया पर्यावरण को बचाने के, खासतौर पर अभी घर घर तिरंगा चल रहा है, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे?
2: अभी शासन के द्वारा घर घर तिरंगा चल रहा है, घर घर तिरंगा अभियान चल रहा है 9 तारीख से लेकर 17 तारीख तक। तो सभी को एक संकल्प के रूप में यही कहा गया है मेरी ओर से, मैं चाहता हूं कि सभी लोग अपने हर घर तिरंगा लगाएं और साफ सफाई रखें। स्वच्छता एक अभियान है, जो इस प्रकार से अपने आसपास की भी साफ सफाई करें, यही हमारा सभी लोगों के लिए संदेश है।

0: शुभकामनाएं और मैं सभी लोगों से बोलना चाहूंगा कि अधिक से अधिक पर्यावरण के लिए पेड़ लगाएं और उनको संरक्षित करें।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड सुनने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज हम चुरारा में उपस्थित हैं और यहाँ पर ग्राम पंचायत चुरारा के सरपंच हमारे साथ उपस्थित हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इस बार हम लोग पर्यावरण को बचाने के लिए क्या काम कर रहे हैं। सबसे पहले सर परिचय देते हुए शुभकामनाएं।
2: नमस्कार सभी ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को और 15 अगस्त की एवं रक्षाबंधन की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं पर्यावरण के संबंध में सभी को यही चाहता हूं कि 15 अगस्त और रक्षाबंधन पर सभी लोग पर्यावरण पर विशेष ध्यान दें, साफ सफाई का, और सभी लोग अच्छे से रक्षाबंधन और 15 अगस्त मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। और सर इसमें एक चीज और जानना चाहेंगे कि इस बार आपने चूंकि अपनी पंचायत को लेकर क्या संकल्प किया पर्यावरण को बचाने के, खास तौर पर अभी घर घर तिरंगा चल रहा है, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे?
2: अभी शासन के द्वारा घर घर तिरंगा चल रहा है, घर घर तिरंगा अभियान चल रहा है 9 तारीख से लेकर 17 तारीख तक। तो सभी को एक संकल्प के रूप में यही कहा गया है मेरी ओर से, मैं चाहता हूँ कि सभी लोग अपने हर घर तिरंगा लगाएं और साफ सफाई रखें। स्वच्छता एक अभियान है, जो इस प्रकार से अपने आसपास की भी साफ सफाई करें, यही हमारा सभी लोगों के लिए संदेश है।

मेरा नाम प्रमोद कुमार कुशवाहा है, सरपंच ग्राम पंचायत जिखनगांव, जनपद पंचायत निवाड़ी। 15 अगस्त एवं रक्षाबंधन की मेरी ओर से बहुत हार्दिक शुभकामना।

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड सुनने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज हम चुरारा में उपस्थित हैं और यहाँ पर ग्राम पंचायत चुरारा के सरपंच हमारे साथ उपस्थित हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इस बार हम लोग पर्यावरण को बचाने के लिए क्या काम कर रहे हैं। सबसे पहले सर परिचय देते हुए शुभकामनाएं।
1: नमस्कार सभी ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को और 15 अगस्त की एवं रक्षाबंधन की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं पर्यावरण के संबंध में सभी को यही चाहता हूं कि 15 अगस्त और रक्षाबंधन पर सभी लोग पर्यावरण पर विशेष ध्यान दें, साफ सफाई का, और सभी लोग अच्छे से रक्षाबंधन और 15 अगस्त मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। और सर इसमें एक चीज और जानना चाहेंगे कि इस बार आपने चूंकि अपनी पंचायत को लेकर क्या संकल्प किया पर्यावरण को बचाने के, खासतौर पर अभी घर घर तिरंगा चल रहा है, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे?
1: अभी शासन के द्वारा घर घर तिरंगा चल रहा है, घर घर तिरंगा अभियान चल रहा है 9 तारीख से लेकर 17 तारीख तक। तो सभी को एक संकल्प के रूप में यही कहा गया है मेरी ओर से। मैं चाहता हूं कि सभी लोग अपने हर घर तिरंगा लगाएं और साफ सफाई रखें। स्वच्छता एक अभियान है, जो इस प्रकार से अपने आसपास की भी साफ सफाई करें, यही हमारा सभी लोगों के लिए संदेश है।
2: मेरा नाम प्रमोद कुमार कुशवाहा है, सरपंच ग्राम पंचायत जखनगांव, जनपद पंचायत निवाड़ी। 15 अगस्त एवं रक्षाबंधन की मेरी ओर से बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं सभी लोगों से बोलना चाहूँगा कि अधिक से अधिक पर्यावरण की

0: रे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर,
1: पवन करे शोर।
0: हाँ

करे शोर। अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर। हाँ।

0: ऐ मेरी हमरंग, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: आजीविका जाने सुने और अपनाए।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का आपके अपने रेडियो साथी मनीष कार्यक्रम आजीविका में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और साथियों, आप जानते हैं कि आजीविका कार्यक्रम में हम अपने युवा साथियों के लिए उनकी आय को बढ़ाने के लिए कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं इस बारे में हम कार्यक्रम बनाते हैं और कार्यक्रम के माध्यम से उनको बताते हैं। कहा जाता है दोस्तों, कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है और पद चिन्ह बनाने वाला ही इस जग में पूजा जाता है। हाँ दोस्तों, ये कहावत जो कही जाती है, सुनी जाती है, बहुत ही अच्छी लगती है और उनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। छोटी छोटी कहावतों से कहा जाता है कि हम जब किसी के पद चिन्हों पर चलते हैं, किसी के मार्गदर्शन से हम चलते हैं, किसी के मार्गदर्शन द्वारा हम चलते हैं, तो हम आगे चलकर एक सफल उद्यमी माने जाते हैं। जो कि हमने कार्यक्रमों में पहले भी बताया था कि उद्यमिता क्या है, उद्यमिता होने के क्या महत्व है। आज के साथी हमारे कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे सफल उद्यमी के क्या क्या गुण होने चाहिए, कैसे उनको व्यवसाय लगाने चाहिए जिससे उनकी आजीविका में वृद्धि हो सकी। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में साथियों आपको ले चलते हैं हितेश धाकड़ जी के पास, जो उप निदेशक हैं हमारे औद्योगिक विभाग से, और साथ में कुछ हमारे विषय विशेषज्ञ हैं जो उद्योग को लेकर काफी अच्छी उनको पकड़ है। उनसे भी हम बातचीत करते हैं कि एक सफल व्यक्ति बनने के लिए उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए और कौन कौन सी विशेषता होनी चाहिए जिससे हमारे युवा साथी अपने कार्य में सफल बने, आगे चलकर सफल उद्यमी कहलाए। तो आइए हम आपको हितेश धाकड़ जी के पास ले चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं।

0: हमारे युवा साथी किस तरीके से सफल उद्यमी बनने के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए, आइए इनसे बातचीत करते हैं। एक सफल उद्यमी जैसे हमारा साथी बनना चाहता है तो उसके लिए क्या गुण उसके अंदर होने चाहिए?
1: एक सफल उद्यमी की पहली विशेषता होती है अनुभव।
0: जी
1: अनुभव और उसका ज्ञान होना। आप जिस भी उद्यम की स्थापना करना चाहते हैं या जिस भी व्यवसाय की आप स्थापना करना चाहते हैं उसको आपको बारीकी से ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो आप अगर हमारे युवा किसी उद्यम की स्थापना और अग्रेसित होना चाह रहे हैं या आकर्षित हैं तो उन्हें पहले ये निश्चित करके कि आप करना क्या चाहते हैं और आपके क्षेत्र में आपके क्षेत्र विशेष में जहां आप उद्यम की स्थापना करना चाहते हैं वहां क्या डिमांड है और क्या सप्लाई है। क्योंकि देखिए मार्केटिंग भी बहुत बड़ा इशू आता है।
0: बिल्कुल
1: केवल उद्यम लगाना ही पर्याप्त नहीं होता, मार्केटिंग स्किल भी होनी चाहिए।
0: जी
1: तो सबसे महत्वपूर्ण गुण यही है कि पहले तो मार्केट स्टडी करें, जिस चीज की आवश्यकता यहाँ पे है
0: जी,
1: किस चीज की उपलब्धता यहाँ पर है
0: जी,
1: और जो हम उद्यम चलाने वाले हैं उसकी मार्केटिंग हम किस तरीके से लोकल में या बाहर के क्षेत्रों में कर पाएंगे।
0: जी
1: तो उससे उसको उद्यम लगाने से पहले हमारे युवाओं को थोड़ा सा बेसिक जानकारी उस चीज की होनी चाहिए।
0: जी जी जी।
1: अब बात आती है फाइनेंस की, क्योंकि वित्त पोषण भी एक समस्या रहती है उद्यमों के विकास के लिए।
0: जी
1: तो काफी विभिन्न सरकारी योजनाएं हैं, शासकीय योजनाएं, मध्य प्रदेश शासन की भी योजना है, शासन की भी योजना, उनके अंतर्गत हम वित्त पोषण की सुविधा प्रदान कराएंगे।
0: जी जी। सर एक चीज और जानना चाहेंगे, चूंकि व्यवसाय तो ठीक है लोग लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति को अगर देखा जाए, बुंदेलखंड की भौगोलिक स्थिति को जाना जाए, तो क्या यहाँ पर कौन कौन से ऐसे व्यवसाय संभव है जो कि आसानी से लोग कर सकते हैं?
1: देखिए अगर ओरछा या फिर निवाड़ी जिले या इस बुंदेलखंड की बात की जाए तो यहाँ पे कई सारी संभावनाएं
0: जी,
1: रिसोर्सेस हमारे पास प्रकृति की देन, प्रकृति की कृपा से हमारे पास काफी सारे रिसोर्सेज
0: जी।
1: तो एक तो मिनरल्स के क्षेत्र में काफी कुछ किया जा सकता है
0: जी।
1: हालांकि निवाड़ी के ओरछा तहसील में काफी सारी इकाइयां खनिज की लगी हुई हैं। इसके अतिरिक्त आता है आपका जो बढ़ती हुई जो आवश्यकताएं हैं, आप जो वुमन बैग्स होते हैं, जैसे हम जानते हैं कि कल 2 अक्टूबर के बाद से सिंगल यूज प्लास्टिक का हमें खात्मा करना है
0: जी,
1: ये सतर्क रहना है। तो फलस्वरूप एक उसकी वैकल्पिक उपयोग की आवश्यकता बढ़ेगी।
0: जी जी।
1: पॉलिथिन का वैकल्पिक क्या हो सकता है? तो हम जूट के थैले, वुमन बैग जो क्या डिग्रेडेबल रहते हैं, जो प्रकृति को हानि नहीं पहुंचाते हैं, उसकी इकाइयों की स्थापना कर सकते हैं
0: जी।
1: इसके अतिरिक्त छोटे उद्यमों की भी स्थापना कर सकते हैं, जैसे कि सोना पत्तल हुआ
0: जी,
1: क्लायस ब्रिक्स हुआ
0: जी जी जी,
1: सीमेंट उद्योग हुआ
0: जी,
1: क्योंकि हमारे यहाँ पत्थर और जो बाकी प्राकृतिक तत्व उनकी भरपूर उपलब्धता है, तो सीमेंट और पेपर क्लॉथ वगैरह
0: जी,
1: अगर क्लायस ब्रिक्स की काफी संभावनाएं इस क्षेत्र में है
0: जी जी जी। और यहाँ पर सर उद्योग स्थापित कर तो लेते हैं, लेकिन वही समस्या यहाँ पर आती है लोगों को कि उनको ट्रेनिंग्स की आवश्यकता रहती है, तो क्या सरकार की ओर से ऐसी कोई ट्रेनिंग्स लोगों को दिलाई जाने की बात की जा रही है या फिर ट्रेनिंग्स दिलाते भी हैं यहाँ पर?
1: जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं अपने युवाओं को बताना चाहूंगा कि हर जिले में एक RCT की स्थापना की गई है
0: जी,
1: रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट
0: जी,
1: या उस जिले की अग्रणी बैंक द्वारा संचालित किया जाता है, हमारे टीकमगढ़ जिले में SBI द्वारा संचालित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये लोगों को ट्रेनिंग देना, उद्यमिता से जुड़ी हुई ट्रेनिंग देना
0: जी।
1: हमारे इच्छुक युवा, हमारे इच्छुक भाई बहन जो भी उद्यमिता संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं वो एक आवेदन RCT टीकमगढ़ में कर सकते हैं, तथा उनको अगले बैच में जब उनका जो ट्रेनिंग आयोजित की जाएगी तो उन्हें सूचना देके उनको बुला लिया जाएगा। तो ये हर ट्रेड वाइज, हर उद्यम वाइज ट्रेनिंग रहती है जिसके दिन अलग अलग रहते हैं, तो जो भी युवा इच्छुक है उनको हम ट्रेनिंग शासन की तरफ से मुहैया कराते हैं।
0: सर कितने दिन की इसमें ट्रेनिंग मुहैया कराते हैं?
1: ये ट्रेड के ऊपर निर्भर करता
0: अच्छा,
1: है, जैसे कि किसी को 15 दिन की ट्रेड रहती है तो उसका 15 दिन का रहता है
0: जी,
1: 20 दिन का रहता है, किसी एक महीने का रहता है, किसी का 5 दिन का भी रहता है, वो ट्रेड के ऊपर निर्भर रहता है
0: जी,
1: आपको कितने दिन की ट्रेनिंग।

0: प्रशिक्षण के बाद यदि उसको प्रमाण पत्र मिलता है तो
1: जी
0: क्या बैंकों में उसकी जैसे हम सबमिट करते हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ उस प्रशिक्षण
1: जी
0: वाले प्रमाण पत्र को, तो उसमें कुछ सहूलियत होती है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, उसमें देखो प्लस पॉइंट हमेशा आवेदक को मिलता है, वो ये वो जब वो सर्टिफिकेट प्राप्त करता है तो वो यह दर्शाता है कि उसके पास एक अन्य लोगों से विशिष्ट उपलब्धि है, उसको उस क्षेत्र का ज्ञान है, उस क्षेत्र का जो भी अनुभव है वो ट्रेनिंग में उसने लिया लिया गया है
0: जी।
1: तो मेरे अनुसार बैंक उसको अधिक कंसीडर करती है, उस पर अधिक विचार करती है और उसको जरूरी लाभ मिलता है
0: जी। अभी वर्तमान में सर उद्योग विभाग की ओर से कौन कौन योजनाएं संचालित की जा रही है?
1: जी वर्तमान समय में उद्योग विभाग में 4 योजनाएं संचालित की जा रही है रोजगार मूलक, जिसमें 3 मध्य प्रदेश शासन की योजना है और 1 केंद्र शासन की योजना है। सबसे पहले मध्य प्रदेश शासन की योजनाओं के बारे में आपको जानकारी दी
0: जी।
1: हमारे यहाँ मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
0: जी,
1: युवा उद्यमी योजना
0: जी,
1: और किसान पुत्र पुत्रियों के लिए मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना संचालित है
0: जी।
1: मुख्यमंत्री स्वरोजगार की बात की जाए तो इसमें 50,000 से लेकर 10 लाख तक का ऋण
0: जी
1: सेवा उद्योग तथा व्यवसाय 3 श्रेणी के लिए लिया जा सकता है
0: जी जी जी।
1: जबकि युवा उद्यमी की बात की जाए तो ये 10 लाख से लेकर 2 करोड़ तक की योजना है, इसमें केवल सेवा और उद्योग की इकाइयों के लिए ही ऋण लिया जा सकता है
0: जी जी,
1: व्यवसाय शामिल नहीं है
0: जी।
1: और मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 50,000 से लेकर 2 करोड़ तक है, इसमें सेवा व्यवसाय तथा उद्योग 3 प्रकार की इकाइयां स्थापित की जा सकती है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, केंद्र सरकार की सर कौन सी योजना?
1: एक केंद्र सरकार की योजना भी हमारे यहाँ संचालित है, वो है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
0: सृजन कार्यक्रम।
1: ये योजना 50,000 से लेकर 25 लाख तक है।
0: अच्छा अच्छा
1: जी, और इसमें सेवा तथा उद्योग की इकाइयों को ही कई स्थापना की जा सकती है, इसमें व्यवसाय आपात श्रेणी में है।
0: चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे युवा साथियों को एक मार्गदर्शन दिया है, क्योंकि उद्यमता के क्षेत्र में लोग अपने एक तरीके से विचार कर रहे हैं कि अब क्योंकि नौकरियां बहुत ही कम देखने को मिल रही हैं और बहुत ही कम रोजगार हो गए हैं, तो लोग अब उद्यमता की ओर रुख कर रहे हैं। आपने महत्वपूर्ण जानकारी देकर हमारे युवा साथियों को मार्गदर्शन दिया, इसके लिए धन्यवाद सर आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।

रेडियो अपनी बात है। एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में, और साथियों हमारे हितेश ढाकड़ जी ने कितनी अच्छी जानकारी हमारे युवा साथियों को दी कि किस तरीके से हमारे युवा साथी एक सफल उद्यमी बनने के लिए उनमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, क्या क्या उनको कार्य करने चाहिए जिससे वो सफल हों, अपने जीवन में सफल हों, अपने व्यवसाय में सफल हों। साथियों आप जानते हैं कि क्या बातें हैं सबसे जरूरी कार्य में आनंद करने के लिए, ये एक गुण होता है जो आपको एक सफल उद्यमी बना सकता है। दूसरा कि गंभीरता, आप तब तक अपने व्यवसाय में सफल नहीं हो सकते हैं जब तक कि आपका उसमें अटूट विश्वास ना हो। ये एक दूसरा गुण होता है जो आपको सफल उद्यमी बनाने में मदद करता है। तीसरा साथियों आत्मविश्वास की कमी, जो कि हितेश जी ने बताया था कि आत्मविश्वास आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आत्मविश्वास किसी भी नए उद्यमी के लिए आत्मविश्वास सबसे जरूरी होता है। चौथा साथियों योजना आपको बनानी चाहिए कि हमें कौन सा व्यवसाय लगाना है, कैसे लगाना है। पूर्ण योजना के साथ यदि हम व्यवसाय करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम एक सफल उद्यमी बन सकते हैं। अगली जो साथियों आपको सफल उद्यमी बनाने का गुण हम आपको बताते हैं, अगली जो गुण होना चाहिए हमारे युवा साथियों को जो सफल उद्यमी बनने के लिए, वो होना चाहिए खतरे उठाने वाला होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जोखिम आएंगे आपको यदि आप उद्यम डालते हैं तो। आपको सबसे पहले मार्केट बनाना होता है, और इसके बाद मार्केट के साथ साथ बहुत सारी समस्या जो रहती है वो सामने आती है, तो ऐसे में खतरे उठाने वाला होना चाहिए सब, तभी एक सफल उद्यमी वो बन सकता है। विशेषज्ञता रखने वाला होना चाहिए, यानी हर विषय में उसको जानकारी होना चाहिए, संबंध जो भी आप व्यवसाय कर रहे हैं उसकी विशेषज्ञता आपके पास होना चाहिए, खुद में निवेश करने वाला होना चाहिए। यदि ये सारे गुण आपके अंदर हो तो आप एक सफल उद्यमी बन सकते हैं और आप आगे जा सकते हैं। साथियों कार्यक्रम में हम एक विराम लेते हैं, यानी लोकगीत के साथ मनोरंजन करते हैं। इसके बाद साथियों आपकी हमारी बातचीत होगी और आपको हम विमल जी के पास ले चलते हैं, और विमल जी चूंकि विषय विशेषज्ञ हैं उद्यमता को लेकर, तो उनसे जानते हैं कि आखिरकार हमारे युवा साथी यदि कोई व्यवसाय डालना चाहते हैं तो सफल बनने के लिए कौन कौन से गुण उसमें होने चाहिए, कैसे सफल हमारा व्यवसाय बन सकता है हमारा युवा साथी। तो आइए इस प्यारे से लोकगीत को हम सुन लेते हैं।

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में। और साथियों, अभी आपने हर प्रसाद कुशवाहा और उनकी साथियों में इस प्यारे से लोकगीत को सुना। आइए अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे विषय विशेषज्ञ क्या कहते हैं, सफल उद्यमी में कौन कौन से गुण होने चाहिए, आइए उनकी बातचीत को हम सुनते हैं विमल जी के साथ।

0: ऐसे में हम क्या करें कि अपनी आय को बढ़ाएं, या एक रेगुलर आय हमारे पास में एक आती रहे जिससे कि हम कर सकें। तो उसका ये कि है कि हमें कृषि के अलावा भी अन्य वैकल्पिक साधनों को खोजने की जरूरत है।
1: जी जी।
0: तो हम अपने क्षेत्र में क्या चीज ऐसी करें, कुछ ऐसा कुछ छोटा सा उद्योग लगाएं जिसमें बहुत कम पूंजी में कुछ उद्योग लगा करके कुछ ऐसा काम करके हम जो है वो अपनी आय की वृद्धि कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि हमारे क्षेत्र में किन चीजों की खपत है, उन खपत के अनुरूप ही हमको उद्यम लगाने की जो है वो आवश्यकता है।
1: जी।
0: अगर हमारे यहाँ पर तेल तिलहन अधिक हो रहा है तो हम तेल का कुछ लगा लें, अगर हमारे यहाँ मसाले अधिक है तो मसाले की चीज लगा लें। तो कैसे हमारे यहाँ मान लीजिए कोई आंवला जैसे हमारे यहाँ हो रहा है तो हम आंवले के अचार का लिए हम एक छोटा सा उद्यम लगा सकते हैं। कई प्रकार के उत्पाद जो है उसके भिन्न भिन्न प्रकार के बनते हैं। तो इसके लिए कुछ नहीं, हमको बहुत छोटी सी कोई हम महीने भर की ट्रेनिंग या दो तीन महीने की ट्रेनिंग लेकर के और किस प्रकार से उस प्रोडक्ट को लंबे समय तक हम बना सकते हैं और छोटा छोटा उद्योग लगाएं, तो ये भी अगर हम प्रयास करें तो हम अपने आय के साधन में जो है वो वृद्धि कर सकते हैं।
2: बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी।
0: धन्यवाद।
2: अपना रेडियो अपनी बातें, आप हैं इस वक्त आपके अपने रेडियो साथी मनीष के साथ सुन रहे हैं कार्यक्रम आजीविका को। और साथियों अभी आपने बिमल जी से इतनी अच्छी जानकारी को जाना समझा और हमें तो लगता है कि अब हमें स्वयं का व्यवसाय करने में कुछ देर नहीं करनी चाहिए। यदि आपके पास ये सारे गुण हैं अच्छे उद्यमी बनने के लिए तो आप तुरंत उद्यम स्थापित आपको करना चाहिए और उद्यमिता में आप एक नया मुकाम हासिल कर सकते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि आम तौर पर किसी भी व्यक्ति को व्यवसाय में सफल होने के लिए उसके एक से अधिक पक्षों पर ध्यान देना होता है, परंतु एक उद्यमी की सफलता में

उद्यमी पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं। वह ग्राहकों को तैयार करता है और ग्राहक रोजगार और आर्थिक विकास को आगे ले जाने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक उद्यमी की राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने की दिशा में बहुत बड़ी भूमिका होती है। दरअसल विकास के एक पड़ले पर अगर रचनात्मकता और विचार, खोज और नवीनीकरण देखते हैं, तो दूसरे पड़ले पर आर्थिक और व्यापारिक पक्ष नजर आता है। इन दोनों पड़नों को यदि हम अपनी अनोखी सोच से साधने वाले व्यक्ति ही एक सफल उद्यमी कहलाते हैं। कहा जाता है कि क्या सचमुच एक सफल उद्यमी पैदा नहीं होते हैं? इस सवाल के जवाब में यह कहा जाता है कि एक सफल उद्यमी में कुछ प्रतिशत जन्मजात प्रतिभा होती है और बाकी वह सीख सकता है। यह भी कहा जाता है कि उद्यमी एक घोड़े की तरह होता है जो नवीन विचारों की गाड़ी को खींचता है, और उसका मतलब एक सफल उद्यमी होने के लिए व्यक्ति में एक साथ कई गुण बहुत जरूरी रहते हैं, जिनमें से कुछ ऐसे प्राकृतिक तौर पर मिलते हैं और अन्य वह काम और अनुभव के साथ साथ चमका सकता है। व्यवसाय विशेषज्ञों का यही कहना है कि सफल उद्यमी किसी भी आयु वर्ग के हो सकते हैं और वह समाज के किसी भी घड़े में आ सकते हैं। यह भी जरूरी नहीं है कि उच्च शिक्षा उसको अंदर होनी चाहिए, और उनके व्यक्तित्व के अलग अलग तरह के वो हो सकते हैं। इसलिए यह कहना भी गलत नहीं होगा कि कई स्थानों पर उद्यमी के लिए उच्च शिक्षा ज्यादा काम आती है, लेकिन अपने काम को बुनियादी जानकारी जरूर काम आती है। जरूरी नहीं है कि आप प्रथम श्रेणी के उद्यमी ही साबित हों। प्रथम श्रेणी से मतलब ऊंचा लक्ष्य रखने वाला और हर समय काम करता हुआ दिखने वाला श्रेणी के छात्री सफल उद्यमी साबित होते हैं, ये कहा जाता है। तो साथियों, आप भी एक सफल उद्यमी बनिएगा और अपने व्यवसाय को आगे ले जाइएगा। कुछ छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखिएगा और आप अपने व्यवसाय की ओर मुड़िएगा। इसी के साथ साथियों, अब हमारा समय होता है आज के इस कार्यक्रम आजीविका से जाने का। तो हमें आशा है कि कार्यक्रम सुनकर आपके मन में कई सारे सवाल और कई सारे विचार आ रहे होंगे, तो आप जरूर पूछिएगा। नंबर आप नोट कर लीजिएगा, नंबर है हमारा 9219207749। व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और इसमें क्या जुड़ना चाहिए ये भी आप जोड़ सकते हैं हमारे इस नंबर पर। यदि हमारे श्रोता साथी चिट्ठी के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, पता नोट कर लीजिएगा। पता है हमारा, रेडियो बुंदेलखंड है 90.4 ताराग्राम ओरछा तिकला के पास ओरछा। तो साथियों, अगले कार्यक्रम में किसी नए व्यवसाय, किसी नए सोच के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपने रेडियो साथी मनीष को दीजिए जाने की इजाजत, और चल चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा लोकगीत आजीविका से जुड़ा। नमस्कार।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथियों कैसे हैं? मैं आशा है कि हमारे सभी श्रोता साथी अच्छे होंगे। अब तो स्कूल कॉलेज सब कुछ खुल गए हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने ट्वेल्थ में बहुत अच्छे मार्क्स उन्होंने पाए हैं उन सभी स्टूडेंटों को, विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं जिन्होंने अपना, अपने देश का, अपने गांव का नाम रोशन किया है। साथियों हम होंगे कामयाब कार्यक्रम के माध्यम से, हम तरह तरह के कार्यक्रम लेकर आते हैं, उनके व्यक्तित्व विकास पर चर्चा करते हैं, कहां पर उनको कैरियर बनाना चाहिए, कैसे कैरियर बना सकते हैं उस विषय को लेकर चर्चा करते हैं, साथ में उनकी आजीविका को लेकर चर्चा करते हैं। सफल जो हमारे साथी रहे हैं उनको भी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से बताते हैं, सुनाते हैं आप लोगों को, और उनसे प्रेरणा लेकर बहुत सारे श्रोता साथी ने अपने जीवन में बदलाव किया है। आज के हमारे इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में, चूंकि स्कूल कॉलेजेस ओपन हो गए हैं और हमारे विद्यार्थी अब असमंजस में हैं, क्या करें, कैसे करें, कौन मार्गदर्शन देगा, बड़ी मतलब ऐसी विचित्र समस्या रहती है इस समय डिसीजन लेने के लिए। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए आज हम पत्रकारिता के क्षेत्र में, चूंकि आज मास कम्युनिकेशन को देखा जाए, पत्रकारिता को देखा जाए तो काफी ब्रॉड होती चली जा रही है, काफी इसका विस्तार हुआ है। तो आइए इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे कैसे हमारे युवा साथी इसमें कैरियर बना सकते हैं, कहां अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कैसे अपॉर्चुनिटी हो सकती है, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज डॉक्टर संजीव जी हमारे आज स्टूडियो में पधारे हैं। तो उनसे आज ज्ञान लेंगे, उनसे आज ऑप्शन ढूंढेंगे, उनसे आज जानकारी लेंगे कैसे हमारे

0: युवा साथी अपना कैरियर, अपना भविष्य इस क्षेत्र में बना सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती है, क्या संभावनाएं होती है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ते हुए डॉक्टर संदीप जी के पास आपको ले चलते हैं, उनसे हम वार्तालाप करते हैं इस विषय को लेकर। सर जानना चाहेंगे।
1: धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी रेडियो बुंदेलखंड के श्रोताओं को अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और रेडियो बुंदेलखंड का आभार अभिव्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने स्टूडियो में मुझे आमंत्रित कर इस वार्ता के लिए सुअवसर दिया।
0: सर देखा जाता है कि अगर बुंदेलखंड की ही बात करें और बुंदेलखंड में खास तौर पर युवाओं का कैरियर, क्योंकि 12th के रिजल्ट घोषित हो गए हैं और नया सेशन भी चालू हो गया है, जुलाई से स्टार्ट हो जाता है, तो चूंकि हमारे बहुत सारे युवा साथी
1: जी
0: ये जहन में उनके रहता है कि अब आगे क्या करें, किसमें कैरियर बनाएं, कैसे बनाएं, क्योंकि उनका जो मन रहता है बड़ा चंचल रहता है। किसी दोस्त ने उनसे कह दिया कि आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आप अपना कैरियर बना सकते हैं, साथ में अगर किसी ने कह दिया कि आप पढ़ाई करिए, IAS IPS की तैयारी करिए, आपको क्या लगता है किस तरीके का लोगों को और खास तौर पर युवाओं को किस तरीके का चयन करना चाहिए? सर
1: बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया और बहुत सटीक समय पे आपका प्रश्न हुआ है। बिल्कुल, बुंदेलखंड रेडियो के सभी श्रोताओं में जो अभिनंदन करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। आपने जैसा प्रश्न किया कि बुंदेलखंड क्षेत्र के युवा, विशेष तौर पर जो लोग 12वीं पास करने के बाद अपने कैरियर की राह पर खड़े हैं और उनको ये विभूचन है कि अब हम कहाँ जाएं, किस क्षेत्र को अपनाएं, ऐसे में उन युवाओं का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि वो मीडिया क्षेत्र को अपना सकते हैं। मीडिया क्षेत्र आज इतना व्यापक है और ये मीडिया डिसिप्लिन अपने आप में एक स्थापित डिसिप्लिन हो चुका है। देश के न सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बल्कि अनेक राज्य विश्वविद्यालयों में भी पत्रकारिता एवं जनसंचार के विभाग हैं, जहां पर की प्रशिक्षित अध्यापक लोग रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, पत्रिकाओं, वेब मीडिया, न्यू मीडिया, डिजिटल मीडिया और रेडियो जॉकी बनने के सपना, बहुत सारे युवा हमारे श्रोता जो इस रेडियो बुंदेलखंड को भी सुन रहे हैं, युवाओं का बहुत ग्लैमर होता है कि या तो वो टेलीविजन में एंकर बन जाएं, कार्यक्रमों को प्रस्तुत करें, या रेडियो में लोग उनकी बातों को सुने। यदि आपकी आवाज में माधुर्य है, मेलोडियस वॉइस है, आपकी वॉइस कल्चर बहुत अच्छी है, आपको संचार कौशल बहुत अच्छा है, बोलने की कला है और आप के पास जनरल अवेयरनेस है, आपके पास आत्मविश्वास है, तो आपको रेडियो जैसे मीडिया क्षेत्र में रेडियो जॉकी, रेडियो प्रोग्राम प्रेजेंटर, रेडियो प्रोग्राम कंटेंट राइटर, आप इसके आलेखक, मतलब स्क्रिप्ट लेखक जिसको हम लोग स्क्रीन प्ले राइटिंग टेलीविजन में कहते हैं, इसी के साथ आपके लिए टेलीविजन माध्यम है, टेलीविजन मैं आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, एक बहुत ही ग्लैमरस मीडिया है जहां पर ना सिर्फ आप टेलीविजन समाचार चैनलों में रिपोर्टर, एंकर बन सकते हैं, आप उसमें करस्पोंडेंट बन सकते हैं, आप उसमें पीस टू कैमरा कर सकते हैं, आप उसमें समाचारों की गैदरिंग कर सकते हैं, बल्कि आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बन सकते हैं, आप फ्रीलांस जो है डिजिटल फिल्म मेकर बन सकते हैं। और उसके लिए आपको कोई बहुत महंगे कैमरे की जरूरत नहीं है, जैसा आपको पता है कि आजकल डिजिटल युग है, मोबाइल से लोग फिल्में बना रहे हैं, रील बना रहे हैं और इंटरनेशनल, नेशनल और आपके रीजनल जो साइंस फिल्म फेस्टिवल होते हैं, यूथ फिल्म मेकिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत सारे कॉलेज और इंस्टीट्यूशन में भी जो है सिनेमा और छोटे शॉर्ट वीडियो रील कॉम्पिटिशन होते हैं, वहां आप अपनी प्रतिभा, अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन बहुत ही सटीक और सक्षम तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा अवसर आपके पास वेब मीडिया का है, जिसको हम कंप्यूटर मीडिया भी कहते हैं या इंटरनेट आधारित मीडिया कह लीजिए, हम कन्वर्जेंस मीडिया के नाम से भी उसी को जानते हैं और डिजिटल मीडिया भी उसी को कहते हैं, जो हमारे बड़े स्क्रीन से आज हाथ में सभी के बच्चों के, युवाओं के, विशेष तौर पे जो मोबाइल है वो उनका कन्वर्जेंस मीडिया है, डिजिटल मीडिया है। मोबाइल या छोटे स्क्रीन पर बहुत सारे सीरियल्स देखे जाते हैं, फिल्में भी लोग डाउनलोड करके देखते हैं, बहुत सारी रील्स आती हैं, आप उसमें यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट और इंटरेस्टिंग स्टोरी देखते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेटिव स्टोरीज हैं, एजुकेशनल और इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम्स भी आप वहाँ देख सकते हैं, किसी पर्यटन क्षेत्र के बारे में अच्छे से आप उसमें रिपोर्ट कर सकते हैं, आप किसी विषय को भी गहराई से समझा सकते हैं, आप एनिमेशन की सहायता करके भी, तो एनिमेशन, मल्टीमीडिया, ग्राफिक्स, वेब मीडिया, टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट जिसको मुद्रित माध्यम जो हमारे

0: 1200 साल से भी अधिक समय से मुद्रित माध्यम है, वहां पर आप जो है अखबार हैं, और अखबारों में ना सिर्फ अंग्रेजी या हिंदी अखबार हैं, आज तो क्षेत्रीय भाषाओं में अखबार हैं।
1: बिल्कुल
0: अभी आप देखेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो NEP 2020 आई है,
1: जी
0: उसके बाद से युवाओं को क्षेत्रीय भाषाओं में हम व्यावसायिक या प्रोफेशनल शिक्षा की बात करते हैं। तो ऐसे में हमारी बुंदेली भाषा हो, हमारी अपनी बघेली भाषा हो,
1: जी
0: हमारी अपनी अन्य चाहे हमारी निमाड़ की भाषा हो,
1: जी
0: मालवी भाषा हो, उन सब स्थानीय भाषाओं में आज बढ़ चढ़ कर होता है। और उसका सबसे सटीक उदाहरण हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र की बिन्नू रदानी को आप लोग यूट्यूब पे देख रहे होंगे, धमाल में खूब कर रही हैं और खूब लोगों ने सुन रहे हैं और उनके श्रोता जने भी खूब हैं। सो बिन्नू रानी से प्रेरणा लेकर हम सब युवाओं का आह्वान करते हैं कि वे भी अपने बुंदेलखंड क्षेत्र के, अपने घर की, अपने बुंदेलखंड की माटी की बिन्नू रानी जरूर बने।
1: बिल्कुल सर, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि हम देखते हैं कि पत्रकारिता क्षेत्र में भी कई सारे मतलब कोर्स चलाए जाते हैं, जैसे कि आपने बहुत सारे कोर्सों के बारे में हमारे युवा साथियों को जानकारी दी, खास तौर पर 12th की बात, जैसे कि इस क्षेत्र में पत्रकारिता के क्षेत्र में हमारा युवा साथी जाना चाहता है, तो कौन से ऐसे कोर्स हैं जिसको आसान तरीके से और किस किस क्षेत्र में वो कोर्स किए जाते हैं, वो सर विस्तार से
0: मैं
1: थोड़ा
0: आपकी पुनः प्रशंसा करूंगा। दूसरा प्रश्न भी
1: जी
0: आपने युवाओं के हित में बहुत सटीक और बहुत अच्छा किया हुआ है। मैं इस बात पर आने ही वाला था।
1: जी
0: हमारे मखला चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, जो अपनी इस समय द वीक और इंडिया टुडे रैंकिंग में टॉप 10 मीडिया इंस्टीट्यूट में जाना जाता है, वहां पर ढेर सारे पाठ्यक्रम हैं। उनके विस्तृत विवरण के लिए मैं सलाह दूंगा कि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के और रेडियो बुंदेलखंड के सुनने वाले श्रोताजन MCU.AC.IN वेबसाइट को विजिट करें। हमारे भोपाल मुख्यालय परिसर है, इसके अलावा हमारा दतिया परिसर है,
1: जी
0: हमारा बघेलखंड में रीवा परिसर है, और निमाड़ में हमारा
1: जी
0: खंडवा परिसर है। जो और इसी तरीके से हमारा MCU दर्शन टेलीविजन स्टूडियो भोपाल में, और रेडियो करमवीर भी है,
1: जी
0: तो वो भी युवाओं को प्रैक्टिकल करने के लिए है। रहा 12th पास विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम का, तो हमारे पास बैचलर कोर्स जिनको हम UG पाठ्यक्रम कहते हैं, वो NEP आधारित 4 वर्षीय हमारे UG पाठ्यक्रम है। दतिया परिसर में हमारे पास BA जनसंचार पाठ्यक्रम है, और साथ ही BBA मीडिया बिजनेस मैनेजमेंट हम दतिया परिसर में दे रहे हैं। खंडवा और रीवा परिसर में भी हमारे बैचलर पाठ्यक्रम है, और हमारे विश्वविद्यालय के बैचलर पाठ्यक्रम की हम बात करें तो हमारे पास BSc इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हमारे पास BA जर्नलिज्म एंड क्रिएटिव राइटिंग में है, जिसको हम BA JCW कहते हैं। इसके बाद हमारे पास BA इन मीडिया रिसर्च है, BA इन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन है, BSc फिल्म प्रोडक्शन है, BSc मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक्स में है, BSc एनिमेशन में हमारे पास BA मास कम्युनिकेशन है, BA इंग्लिश जर्नलिज्म है, और हमने BA हिंदी पत्रकारिता और अनुवाद प्रौद्योगिकी में भी इसी वर्ष से शुरू किया है, क्योंकि NEP में हमारी भारतीय भाषाओं पर काफी जोर दिया गया है।
1: जी
0: तो हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर KG सुरेश जी ने, जो कि भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक थे, उस समय भी उन्होंने भारतीय भाषाओं पर बहुत काम किया था,
1: बहुत
0: और
1: बढ़िया
0: उसी से प्रेरणा करते हुए उन्होंने इस अकादमिक सत्र 2024 में
1: जी
0: भारतीय भाषा, विशेष तौर पर हिंदी एवं अनुवाद प्रौद्योगिकी,
1: जी
0: हिंदी एंड ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी का एक बैचलर कोर्स शुरू किया है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को अपनी इंटरेस्ट के अनुसार बहुत सारे वैरायटीज ऑफ प्रोग्राम हमारे पास UG हैं, और इसी तरीके से हमारे पास मास्टर्स प्रोग्राम है, जिसमें किसी भी स्नातक, चाहे वो आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, होम साइंस का हो, फार्मेसी का हो, इंजीनियरिंग का हो, साइंस का हो, वो यहाँ पर एडमिशन ले सकता है। उनके लिए MA प्रसारण पत्रकारिता है, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म है, MSc इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, MA इन डिजिटल जर्नलिज्म है, MA इन प्रिंट जर्नलिज्म है, MSc मीडिया शोध है, उसके बाद हमारा MSc इन न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी है, फिर हम MCA कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी देते हैं, हमारे पास MBA इन मीडिया बिजनेस मैनेजमेंट है, हम MBA भी ऑफर करते हैं, MA इन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस भी है, MSc फिल्म प्रोडक्शन है, MA मास कम्युनिकेशन है, हम लोग MLIV और BLIV पाठ्यक्रम भी ऑफर करते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ मीडिया पाठ्यक्रम, और हमारे पाठ्यक्रमों की एक विशेषता है कि हम लोग हर 2 साल में उनको अपडेट करते हैं, उनको मीडिया इंडस्ट्री की मांग के अनुरूप उनको अद्यतन करते हैं, अपडेट करते हैं, और हमारे यहाँ पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं हाईली प्रोफेशनल हैं, और बीच बीच में विशेष व्याख्यान है मास्टर क्लासेस के लिए, हम इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स को बुलाते हैं, विद्यार्थियों के एजुकेशनल विजिट के लिए उनको टेलीविजन स्टूडियो है, प्रिंटिंग प्रेस है, रेडियो स्टेशंस हैं, वहाँ की भी विजिट कराते हैं। बहुत जल्द ही हमारे दतिया परिसर के विद्यार्थी भी आपके रेडियो बुंदेलखंड का विजिट करेंगे, और हम इसी तरीके से अपने विद्यार्थियों के व्यवहारिक कामों के लिए उनको इंटर्नशिप पर भी अटैच करते हैं। तो समग्रता में हम मीडिया शिक्षा देने का प्रयास अपने परिसर में विद्यार्थियों को, ना सिर्फ हम मीडिया शिक्षण देते हैं बल्कि उनका चहुमुखी विकास 360 डिग्री उनका हम डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं, उनकी जीके की तैयारी करवाते हैं, उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार कराते हैं, उनको हम कैमरा फेस करने की टेक्निक सिखाते हैं, पीस टू कैमरा उनको सिखाया जाता है, उनको वक्तव्य कला जो है उनको मंच पर जाकर अभिव्यक्ति की सिखाते हैं, बॉडी लैंग्वेज पर हम लोग बहुत फोकस करते हैं कि आप अपने गेस्चर्स को, पोस्चर्स को, फेशियल एक्सप्रेशंस को, आई मूवमेंट्स को कैसे कर सकते हैं, आर्ट ऑफ इंटरव्यू कैसे करें, इंटरव्यू कैसे लें, इंटरव्यू कैसे दें, और आप में कम्युनिकेशन स्किल कैसे हो, इन सब बातों पर दिया जाता है। जैसे आपके रेडियो माध्यम में आवाज के आरोह अवरोह को, वॉइस मॉड्यूलेशन को, वॉइस कल्चर को, वॉइस डिलीवरी को, वर्ड्स को, क्योंकि कानों का माध्यम है तो इसमें आप रिपीट नहीं करें, इसमें आपके उच्चारण की शुद्धता चाहिए, भाषा की सरलता चाहिए, सटीकता चाहिए, साथ ही एक गति ऐसी चाहिए कि श्रोता आराम से सुन पाए, क्योंकि उसको दोबारा सुनने का, उसका अर्थ समझने का अवसर नहीं है जो प्रिंट माध्यम है। रेडियो माध्यम बहुत ही अलग माध्यम है, तात्कालिक माध्यम है, ताजा माध्यम है, क्योंकि इसमें इमीडिएसी का महत्व है।
1: बिल्कुल सर,
0: इसमें कोई भी अंतर वस्तु को आप बहुत तत्काल और ताजा अपने श्रोताओं तक पहुंचा सकते हैं, और ये एक ऐसा माध्यम है कि आपका श्रोता अपने काम करते हुए सुन सकता है, वो अपने ऑफिस में, यात्रा के दौरान, कार चलाते हुए, अपने दफ्तर में, इवन गृहिणी अपने घर में भोजन पकाती हुई रेडियो माध्यम को सुन सकती है। इसलिए आज रेडियो माध्यम जो हमारा 1927 में भारतीय प्रसारण सेवा से जिसकी शुरुआत हुई थी, आज भी लगभग 100 वर्ष होने को है, अगले तीन हम लोग 97 वर्ष रेडियो प्रसारण के भारत में कर चुके हैं, और रेडियो माध्यम आज भी पॉपुलर है, और हम देख रहे हैं कि देश में सामुदायिक रेडियो और कम्युनिटी रेडियो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण जो हमारा मंत्रालय है, मिनिस्ट्री है, वो इन सब चीजों को प्रोत्साहित करती है, और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे मध्य प्रदेश का पहला बुंदेलखंड क्षेत्र का रेडियो बुंदेलखंड स्टेशन से आज मैं इस कार्यक्रम को प्रसारित करने में आपने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए आभारी हूँ, और उन सभी श्रोताओं का मैं पुनः अभिनंदन करता हूँ जो आज इस रेडियो बुंदेलखंड के इस लोकप्रिय कार्यक्रम से जुड़े हैं।
1: सर, इसमें से बस चूंकि आपका समय अमूल है, हम जानते हैं सर, इसमें से भी दो प्रश्न निकल के आते हैं। एक तो हमारे जो युवा साथी रहते हैं उनको मतलब ये रहता है कि हम लोग कोर्स करते रहें, साथ साथ में हमारे हाथ में जॉब होनी चाहिए, अच्छी से जॉब होनी चाहिए। दूसरा एक ये रहता है कि वो लोग ये नहीं चाहते हैं कि हम बैचलर डिग्री कर रहे हैं तो उसमें 3 से 4 वर्ष लगता है तो उतना समय नहीं है। ये शॉर्ट टर्म ऐसे कोई कोर्स चलाए जा रहे हैं आपके माध्यम से कि वो उसको भी करते रहें और उसको अपना जॉब को भी देखते रहें?
0: ये जी, हम लोग चूंकि एक विश्वविद्यालय व्यवस्था के तहत हैं, उच्च शिक्षा अध्ययन के तहत हमारे डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, यूजी प्रोग्राम्स और पीजी प्रोग्राम्स हैं, तो उन सब की अवधि, तो उसमें डिप्लोमा प्रोग्राम हमारा 1 वर्ष का है, माखला चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के भोपाल परिसर में सांध्यकालीन पाठ्यक्रम है, जिनको आप mcu.ac.in पे जाके डिटेल विस्तृत विवरण देख सकते हैं। वहाँ पर हमारे डिजिटल मीडिया, रेडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन जैसे भी कार्यक्रम है, और साथ ही हम जो है दतिया परिसर में बहुत जल्दी वहाँ पर अभी माननीय कुलपति जी एक कमेटी बना के उस पर तय कर रहे हैं कि यहाँ पर हम एक्टिंग में और रेडियो जॉकी भी यहाँ पर प्रस्तावित है, क्योंकि बुंदेलखंड क्षेत्र के युवाओं में बहुत प्रतिभा है। बिन्नू रानी जैसे हमारे जो आज 8वीं पास हमारी बालिका धूम मचाई हुई है, तो उससे प्रेरित होकर भी बहुत सारे युवाओं ने ये बात, मैं पिछले 2 दिनों से दतिया परिसर में हूँ तो विद्यार्थियों ने चर्चा के दौरान ये बात समझ में आई कि यहाँ पर फिल्म एक्टिंग को लेकर और यहाँ पर रेडियो जॉकी के पाठ्यक्रमों की काफी मांग है, तो हम लोग भोपाल में इस पे विचार करके जल्दी यहाँ पर सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम रेडियो जॉकी पे, आरजे पर और एक्टिंग पर करने पर विचार कर रहे हैं। वैसे विश्वविद्यालय समय समय पर अल्पावधि पाठ्यक्रम भोपाल में आयोजित करता है, अगर दतिया परिसर में आपके रेडियो बुंदेलखंड के संयुक्त तत्वाधान में सहयोग से यदि बहुत सारे युवा सहयोग करेंगे, अभिरुचि दिखाएंगे और आप यदि हमसे सहयोग चाहेंगे तो हम अपने दतिया परिसर में आपको रेडियो जॉकिंग और रेडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन के ऊपर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 दिन का, 1 हफ्ते का, 15 दिन का, जैसा भी आप उपयुक्त संगे, 2 हफ्ते का हम लोग कर सकते हैं। और बहुत ही उसमें मतलब विद्यार्थियों से हमारा कोई उद्देश्य कमाने का नहीं होता है, तो हम उसको निःशुल्क आयोजित कर सकते हैं। पंजीयन शुल्क वगैरह कुछ न्यूनतम उसमें हो सकता है और उसके लिए बाकायदा विश्वविद्यालय से आपको जो भी प्रतिभागी होंगे उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा और रेडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन के लिए उनको जो भी आवश्यक सामग्री है, जो प्रशिक्षण सामग्री है, किट वगैरह है, वो भी हम देने का प्रयास करेंगे। तो ये आपकी जब इस तरीके का प्रस्ताव आएगा तो हम लोग जरूर उस पर विचार करते हैं और हम लोग बुंदेलखंड क्षेत्र के युवाओं के लिए यदि सेवा करने का अवसर रेडियो बुंदेलखंड के सहयोग से हमें प्राप्त होता है तो हम लोग को बहुत खुशी होगी।
1: बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने छोटे समय में ही बहुत सारी हमारे युवाओं को प्रेरणादायक बातचीत बताई है, साथ साथ में उनके कैरियर को लेकर, उनके कैरियर काउंसलिंग को लेकर और खास तौर पर बहुत सारी ऐसी आपने बातचीत बताई है जिससे हमारे युवा साथी बिल्कुल हिचकिचाएंगे नहीं और इस क्षेत्र में अपने भविष्य बनाने के लिए तत्पर तैयार रहेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर
0: रेडियो बुंदेलखंड और यहाँ की टीम का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, आभारी हूँ और अपने बुंदेलखंड क्षेत्र के भाई बहनों को, बिन्नुवन को हम जय का ऊंचा कि वे आए और जा क्षेत्र में बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ, जैसे बिन्नु रानी धमाल कर रही आप और रन भी धमाल करें, जय बात के साथ, जय राम जी।

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में। और अभी आपने डॉक्टर संजीव गुप्ता जी को सुना जो HOD है माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय भोपाल से, और उन्होंने बड़ी बखूबी तरीके से पत्रकारिता के क्षेत्र में किस तरीके से हमारे युवा साथी अपना कैरियर भविष्य बना सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, उस विषय को लेकर विस्तार से चर्चा की है। बहुत अच्छी चर्चा इन्होंने की है इस कार्यक्रम के माध्यम से, और हमें आशा है कि हमारे श्रोता साथी समझ गए होंगे कि किस तरीके से पत्रकारिता के क्षेत्र में हमारे युवा साथी अपना करियर अपना भविष्य बना सकते हैं, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि बहुत सारी संभावनाएं इस क्षेत्र को लेकर, और आज देख रहे हैं कि सोशल मीडिया बहुत बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रहा है, और खासतौर पर रील हुई और फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, साथ साथ में छोटे छोटे चैनल भी, हमारे यूट्यूबर चैनल जिसे कहा जाता है वो भी बहुत सारे खुल गए हैं। तो कैसे अपना भविष्य बना सकते हैं छोटी छोटी वीडियोस बनाकर, अपनी सच्चाई को दिखाकर, क्योंकि पत्रकारिता एक बहुत बड़ा संचार का माध्यम है, किस तरीके से अपना भविष्य बना सकते हैं इस विषय को लेकर बड़े विस्तार से उन्होंने बात बताई है। इसके लिए डॉक्टर संजीव गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आशा करते हैं कि ऐसे ही आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो। साथियों इसी के साथ हमारा वक्त हो चुका है आज के हमारे इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम से जाने का। कैसा लगा कार्यक्रम हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पे, नंबर है हमारा 92-19-20-77-49, और हमारा पता है जो आप चिट्ठी के माध्यम से हमें अपने बातचीत को भेज सकते हैं। चिट्ठी पत्रिका का पता है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तेगला के 5 ओरछा, और आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम से जाने की इजाजत। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, और चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक प्यारे से गीत को। नमस्कार।

की अगर होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बढ़ाती, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती और कहने लगी।

नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी रेडियो दोस्त वर्षा की दो हाथ जोड़ के नमस्कार पहुंच जावे। और साथियों देखो, आपको तो पता ही हैगो कि आज के दिन और इस समय पे आपके बीच में कौन सा कार्यक्रम आवे वालो हैगो। तो हम लेके हाजिर हो गए हैंगे आपको अपनो मन पसंद कार्यक्रम स्त्री एक कहानी मेरी भी। ई कार्यक्रम में अपने सब साथी जानत भी हैंगे कि अपन और एक महिला से बात कर रहे थेंगे और उसे पूरे जीवन की गाथा को सुनत हैंगे कि उनको कैसो सफर रहो है वो पूरे एक जीवन को, उनने पढ़ाई कितने तक करी हैगी और साथ में उनकी शादी कब भई थी और साथ में जाने के भी जब शादी उनकी भई थी तो भी शादी के बारे में जाना था कि नहीं। देखो जिसे शादी उनकी हो रही थी उनको ने देखो भी है तो या नहीं देखो, तो क्योंकि आज के समय की अगर अपन और बात करें तो आज तो देख भी तो बाद में जात, पहले मोबाइल नंबर पहले पहुंच जाता ही, और मोबाइल नंबर जब पहुंच जाती तो बातें भी खूब दम से होती और फिर देख भी की तो बातें अलग हैगी कि देख तो एक दो बार लेते ही हैंगे। लेकिन पहले के समय में अपनों ने देखो कि आज जितनी भी कहानी अपनों ने स्त्री में सुनी हैंगी उनने कोनो ने भी जानी गई कि हमने देखो हतो उन्हें जिनसे हमारी शादी हो रही थी, बस परिवार वाले देखिया या को के जैसे कि जो मानदान रहते हैंगे बेओरे देखे आते ही, तो लड़की को देखने की कोनो जरूरत नहीं पड़त हैगी। तो आज की ये कहानी में अपन और बात करेंगे लक्ष्मी जी से जो कि राधापुर की रहने वाली हैंगी, और राधापुर की लक्ष्मी जी अपन को बता रही हैंगी कि की तरह से उनको जीवन रहो हैगो, और साथ में भी बता रही हैंगी कि 20 साल से भी आंगनबाड़ी में नौकरी कर रही हैंगी, तो उनके जीवन के का अनुभव उनको रहे हैंगी और पढ़ाई को लेके भी कितनी सोचती हैंगी, ये सब बातें अपन और आज की ये कार्यक्रम स्त्री में करेंगे। तो चलो साथियों देर नहीं करा थेंगे, हम आपको सीधो ले चला थेंगे राधापुर जिते अपन लक्ष्मी जी की कहानी उन्हीं की जुबानी सुन रहेंगे। तो चला थेंगे राधापुर।

0: राम राम अम्मा।
1: राम राम।
0: क्या नाम है अम्मा आपको?
1: लक्ष्मी नाम मेरा।
0: अच्छा, कहाँ रहती हैं आप?
1: राधापुर।
0: राधापुर में रहती हैं?
1: हाँ।
0: क्या करती हैं अम्मा?
1: आंगनवाड़ी में काम कर रहे।
0: आंगनवाड़ी में होंगी आप? कितने साल से कर रही?
1: हम कर रहे 20 साल से।
0: बीस साल से?
1: हाँ, 20 साल से।
0: अच्छा, तो अम्मा आज हम आपसे आपके जीवन के बारे में

0: हो जाते हैं। तो जैसे शुरुआत की बात करें, आपको मायको कितने है?
1: हम मायको झांसी में है।
0: झांसी में कौन जगह?
1: झांसी में है गोविंद चौराहे ढाल के नीचे, राज डॉक्टर आपने सुना हूँ कभी?
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: उन्हीं के नीचे रहते थे।
0: अच्छा, उन्हीं के नीचे रहते थे। आपके परिवार में कोई है तो?
1: हमारे परिवार में हमारे भैया थे, भाभी थी, बहने थे, तीन बहने थे।
0: अच्छा, तो और मम्मी पापा?
1: मम्मी पापा आते।
0: अच्छा, आपके घर पे क्या काम हो तो?
1: वहाँ पे तो चौका बर्तन करते सब के थे, जगह जमीन नहीं होती, मजबूरी करते और बड़े बड़े लोगों को काम करे आते। मैं पिताजी गुजर गए थे, हम लोग सब छोटे थे, हमारी अम्मा अकेली का करती।
0: हाँ,
1: तो अम्मा ने सबको लगा दो, तो कोई को 10 रुपया महीना से, कोई को 5, जब समो छोटो।
0: अच्छा, 10 रुपया?
1: हाँ, 10 रुपया से। हमारे भैया को 15 रुपया मिलते, हमें 10 बच्चा खिलाते उनके।
0: अच्छा,
1: खाना देती वे और कपड़ा मपड़ा देती, 10-5 रुपये 10 रुपये दे देती महीना भर।
0: तो मतलब इस तरह से चलत रहता। अच्छा, अगर आप आपके बचपन की बात करें तो बचपन में और का काम आपने, पढ़ाई कितने तक करी आपने?
1: हमने पढ़ाई 5 तक करी।
0: 5 तक पढ़ाई करी है। अम्मा आपकी उम्र कितनी हुई है?
1: हमारी उम्र 2 साल कम रह गई, 60 साल में।
0: 60 साल में 2 साल कम रह गई आपकी। तो उन्हें बचपन में काम, तो जैसे आपने बताया कि काम भी करे, लेकिन उसे और छोटे जो बचपन होते ही, जब मान लो अपन काम करे हुए की उम्र नहीं होती,
1: जब ध्यान थोड़ी रहा, जब तो खेलता ही खाते।
0: हाँ, तो वही खेल हुए की बात हम कर रहे हैं। आपने खेल कौन कौन से खेले?
1: खेल अब का कंची खेल रहा है, कहीं रेडी खेल रहा है, ये यही खेल खेलते थे। और चपट्टा खेल रहा है?
0: चपट्टा का
1: सावन को मुझे चपेटा खेलत।
0: अच्छा अच्छा,
1: जी खेल रहे।
0: तो सावन में आप गीत भी गाती हूँ? हाँ। खेलत में गीत, आप गीत सुनाओ।
1: हम नहीं जाना तो मैंने गीत में।
0: अच्छा, गीत ही नहीं आते?
1: नहीं।
0: पहले तो गाती हूँ आप?
1: अब यार भूल गए, अब तो बुढ़ापो है, ऐसे कुछ ही नहीं आता।
0: इतने बुढ़ापो नहीं है आपको? 60 साल हो रही, लेकिन बुढ़ापो नहीं लगा था आपको?
1: बुढ़ापो का ही नहीं है।
0: तो कौन सा गीत गाती है?
1: कौन नहीं गाते हैं
0: आप? गाते नहीं। अच्छा, आपकी सहेली कौन कौन थी?
1: हमारी सहेली अब सब बूढ़े हो गए, अब सहेली को जाने कहाँ कहाँ गई, को अंगूरी ना तो काऊ को पुष्पा ना तो, ऐसे सबके नाम आते सबके, कोई की कहीं शादी हो गई, कहीं की कोई की कहीं हो, अपने अपने घर चली नहीं सब।
0: अब मिलती हूँ आप लोग?
1: हाँ, मिल जाते, कभी कभी इकट्ठे हो जाता, खुशी तो जो से अपन लोग मायके में आप तो सब बहने मिला तो अच्छा लगते।
0: अच्छा अम्मा, जो बताओ कि आपके समय में पहनावे कौन कौन से थे, मतलब पैरत का कपड़ा कौन कौन से चलते?
1: कपड़ा पहले तो देखो गरीबी होती, सो चड्डी कपड़ा की सिलाते पहनते और फिर आके पहनते, और फिर आकर नहीं मिली तो बिस्कुट पहन लेते, बुक्सेटे ये पहन लेते, और हम तुमने फिर आके दे रही तो भी पहन लेंगे, बस और यही पहरा हो।
0: मतलब कोनो अलग से नहीं
1: है? अलग से नहीं है तो।
0: अच्छा, तो अब हम आपसे बात करें, आपकी शादी कितनी उम्र में?
1: हमारी अब हमें तो ध्यान नहीं है बहन, कितने उम्र में हमारी भाई जाती,
0: तो मतलब कछु तो अंदाजा हुई है जब आप जाना था शादी के बारे में?
1: नहीं जानते जब हमारी शादी हो गई थी,
0: बिल्कुल नहीं जानते। अच्छा, जिसे आपकी शादी हो रही थी वहाँ आपने देखो तो? पहले से देखो तो?
1: नहीं नहीं, पहले कहाँ देखा देखते, पहले ना कोई मोड़ी देखा तो ना कोई मोड़ा देखा।
0: अच्छा,
1: एक से तो आते ही हमारे बाप माताई 8-9 साल के साथ, 9 साल के हमारे पिताजी गुजर गए थे, 9 साल की शादी कर रही थी।
0: अच्छा।
1: तो जिन जिनको काम करते हमारी माताई ने कही क्या 500 रुपया दे दो मोड़ी को ब्याह करने, बोली तुम्हें 10-10 रुपया मिला तो 500 रुपया ले लो, 500 चुका। उन लोगों ने सबने 100-100 रुपया फोन में दाए थे।
0: अच्छा,
1: तो वही बताई नहीं होती कई मतलब
0: 500 रुपया में ब्याह
1: होगा नहीं सबसे जैसे।
0: अच्छा।
1: कछु कछु लोगों ने ऐसे पुनो आती है देखे, उन लोगों ने और ज्यादा दे दे, वैसे ही के बिटिया को पुन ब्याह हो रहा पुण्य में दे दो पैसा।
0: अच्छा,
1: बड़े बड़े सेठ लोग
0: तो
1: सही ऐसे वहाँ ब्याह हो गया।
0: अच्छा, जब आपकी ब्याह हुआ इसके बाद कितने आपकी ससुराल देते हैं? राधापुर में भाई है
1: ना? हाँ, राधापुर
0: में ससुराल है आपकी। तो आपने पहली बार जब कौन कौन सी रस्में आपकी भाई हैंगी, जैसे पहले दिन तेल मंडप?
1: हाँ, पहले पहले मंडप तेल भाव कर मंडप भाव फिर टीका।
0: अच्छा, 3 ही दिन को ब्याह हो तो?
1: हाँ, 3 दिन को बहुत।
0: तो बारात 3 दिन मिली रही थी कि एक?
1: नहीं, एक ही दिन, नहीं 3 दिन मिली रही थी बारात,
0: तेल वाला
1: दिन आ जाती? नहीं, ब्याह के टीका के दिन।
0: अच्छा,
1: और फिर भावर मावर बरतती, फिर वो दिन छोड़ी जाती बारात, दूसरे दिन आ जाती।

0: जयमाला
1: डरी तो जयमाला नहीं डरी मैं हमारा जयमाला नहीं डरी मैं ना मैं तो लट्ठा को सफेद लट्ठा नहीं जिसे मार्किन से अपन खोलियन पे हाँ और खोलियन पे चढ़ा वही को लांगा वही को दुपट्टा
0: अच्छा।
1: और जब तुम जो होट बल्लाल बाको बिलाउस चावल मार दे
0: अच्छा चावल जी का ढाले जाता आपको कछु बताओ
1: नहीं बता नहीं बता
0: अच्छा चावल को कछु पता ही नहीं तो
1: मड़वा के नहीं अच्छे और खड़ो कर ला हमारी बुआ ने बोले चावल मार दे सबने बस फिर बाहर चलो गो लड़का फिर पंगत मंगत होने लगी पंगत मंगत भाई फिर चढ़ाओ मड़ाओ चढ़ो फिर
0: कांवरे काका चढ़ा तो आपको
1: हमें पेज ना चढ़ी थी एक किलो के वो खम वज्जा
0: एक किलो की पेज
1: ना हाँ एक किलो के पेज ना हाँ। खम वज्जा और जो इतने पैर थे पहने थे
0: बाजू बंद
1: हाँ, हाँ। बेचारे थे
0: अच्छा तो अब
1: रखे हो आप हाँ अब की बात छह लड़का होगा छह लड़का के ब्याह कर ले कहाँ से आ रहे
0: हो अच्छा आपकी विदा कह रहे भाई
1: हमारी डोल में डोल जब डोली नहीं रहा वही में वही थी
0: बेटा
1: नहीं उतर से तो फिर बैलगाड़ी में आए थे
0: बैलगाड़ी में अच्छा इसी पहले आपने बैलगाड़ी में बैठी नहीं
1: हाँ ऐसे कब हम बैठ जाते लेकिन वैसे बैठ जाते लेकिन विदा होके हमारी गाड़ी गई से आई थी
0: अच्छा बैलगाड़ी झांसी से
1: कैसा लगा हुआ था आपको विदा हो रही आपकी और बैलगाड़ी से होती पहले विदा सवाई की होती का
0: अच्छा।
1: पहले जे इतने वाहन कहाँ थे
0: हाँ,
1: ओरछा तक नहीं जाते खेलार तक नहीं जाते अब तो एक कदम नहीं निगरा आदमी
0: अब तो अगर तुम्हें भी जाना है
1: अगर तुम्हें कारस देव में जाना तो गाड़ी
0: से जाना है
1: जाना
0: है सही बात है तो फिर जब आप विदा होके इतने आई तो इतने ससुराल में कुकू मिलो आपको
1: ससुराल में सास ससुर जेठानी
0: अच्छा आपके में नंबर की
1: है हम दूसरे नंबर के नानी दादो
0: नंदन की शादी हुई
1: हाँ
0: शादी के बाद
1: बड़ी
0: बड़ी अच्छा तो फिर आपके एते का करस में भाई मतलब कंकन
1: छूटा कंकन छूटो हाथे लगे थे दो तीन चार दिन रहे थे फिर चले गए थे
0: अच्छा, खिचड़ी मिचड़ी नहीं बनाई
1: खिचड़ी बनाई थी
0: आपने खुद बनाई थी
1: नहीं बना पाई थी हमने हमारी जेठानी ने बना दी थी
0: अच्छा।
1: और चमचा से तरवा दी थी
0: नाम होगा
1: हाँ और द्वारे में और डरवा दे
0: अच्छा
1: हाँ,
0: जैसे जब आपने खिचड़ी बनाई
1: और
0: सबने खाई तो फिर
1: हाँ, कांगन
0: नहीं मिलो तो
1: हमें नहीं एक कछु नहीं मिलो तो हमें तो और पैसा रखने
0: पड़े
1: थे चूल्हे में
0: हाँ।
1: हाँ। पहले देता ही थे
0: अच्छा।
1: अभी भी देता मोरन के
0: हाँ, हाँ।
1: जैसे खिचड़ी बनवा तो चूल्हे में रखवा सा बहू से सास लेते हुए पैसा चाहे दस धरे चाहे ग्यारह हो चाहे एक सौ लेकिन वो सास ले ओरेंडा तो ओरेंड पे रखत बहु
0: अच्छा,
1: तो बेबी सास ले
0: अच्छा ये
1: जी की सास ना हो तो जेठानी
0: ले तो जैसे पहले एक अबे एक रसम होते जूड़ा खुलते ही सास तो आपके समय में खुलते
1: नहीं हमारे समय में नहीं खुलते
0: जूड़ा नहीं खुलते अच्छा आपकी
1: जो छोड़ा खुलते जो
0: छोड़ा खुलते
1: जो छोड़ा
0: तो ये भी पैसा
1: सास खोल सकती है
0: काम हाथ हो तो मतलब
1: जब सास रे में आ जाओ तो जो छोड़ा खोल सकती सास कछु महा थुज जे
0: देखो अच्छा आपको नहीं पता ना
1: छोटे आते से कछु दे
0: सब जतनी आते होते फिर आपके काम जब आप दूसरी बार आई अपने ससुराल में फिर कैसे काम कराती जेठानी के संग मिल के कराती या लड़ाई होती
1: जेठानी के संग कराते लड़ाई काहे को होती
0: कभी लड़ाई नहीं हुई आप
1: नहीं हमारी नहीं भैया था
0: सास से
1: ना सास से भाई कब
0: होना काहे नहीं होती आप सीधी आती के दो जने
1: दो एक से आते मिल के कर लेते हो बस सबने फिर से आने होगा ऐसे सब अलग अलग होगा
0: अच्छा और इतने सासरी में का काम होते आपके खेती
1: इतने खेती होता ही रात से खेती होती
0: अच्छा
1: फिर मोटरे कहाँ थी रात ऐसे खेती होती तो रात चलाते रहते
0: अच्छा और जैसे जब खेती की आपने बात करी है तो आप सुबह से चक्की भी पी सकती
1: चक्की पी सकते हो सवेरे चार बजे से
0: कितने बजे उठाती
1: आप चार बजे उठ जाते चार बजे से पी सकते पाँच छह किलो नाच पीस लेते
0: पाँच छह किलो रोज पीस
1: लेते हाँ रोज तो जेठानी पी सकती
0: तो भी कभी पी सकती आप जैसे सुबह से उठ के पी सकती
1: हो चार बजे से भी पी सकती
0: संगे पी सकती
1: हूँ ना कभी संगे कभी अलग अलग पी सकती
0: अच्छा फिर उसके बाद चक्की पीसने के बाद काका काम
1: फिर गोबर मोबर डाल रखते
0: कितने गायब

0: पहला 10 बार गैया हते गोबर मोबाइल रखते झाड़ा झूठी करते फिर एक जनी रोटी बनाने लगती एक जनी काम करने लगती।
1: अच्छा, वो काम कर लेती।
0: तो फिर कुबा पे 8 बजे तक निकल जाते चलाते दिन भर।
1: अच्छा,
0: वहाँ
1: से
0: घड़िया नहीं आती लोहे की, चलाते रहते कबू सात जठानी चलाती कबू हम चलाते रहते,
1: मतलब लड़ाई नहीं होती। अच्छा, आपकी कितनी मोड़ी मोड़ा
0: है? हमारा 6 लड़का। 6 लड़का
1: और लड़की?
0: लड़की नहीं है एक।
1: लड़की नहीं है एक। तो अपने लड़का को तो पढ़ाओ
0: जुफू भाई। हाँ, का पढ़ाओ, मैं परेशानी हाथी से कुछ नहीं पढ़ा।
1: अच्छा,
0: 5-5 पढ़ा जाइए स्कूल में बस।
1: अच्छा, सरकारी। हाँ, तो अब सबकी शादी हो गई?
0: हाँ, सबकी हो गई, सब नाती ना तुम लड़की हो गई।
1: अच्छा, नातीन की भी हो गई? नाती है
0: 6 नाती है 6 नातने हैं।
1: आती को मतलब बड़ा परिवार है।
0: हाँ, तो 6 लड़का है तो 2-2 है सबके।
1: अच्छा,
0: और 1 के 4 है बड़े के, 3 मोड़ी है।
1: तो
0: एक मोड़ी तो आप बिरोबर हो गए,
1: परिवार
0: मोड़ी के 2 मोड़ी मोड़ा होगा, 1 के छोटी 1 के मोड़ा होगा, 1 के मंझले मोड़ा की के मोड़ी है मोड़ा है वो।
1: बहुत बड़ा परिवार है,
0: आपको अच्छा लगा थी। तीते भान पे हुआ, सब जने आ जाते हैं तो अच्छा लगा थी, है ना।
1: तो आप
0: सुबह
1: नहीं खेलती
0: हो? मैं क्या सब खेलती?
1: आप अपने सुबह
0: तो सवेरे उठ के सब जगह लीपो पोतो झाड़ो
1: चौक पूरो बस फिर खेल
0: गाना गाते
1: अब
0: वही
1: रात
0: सब
1: भूल गए, भूलने याद याद करने आते। बहुत बढ़िया आपकी बातें हमें लगी हैं अम्मा। लेकिन एक बात और, आपने पूरी मतलब आंगनबाड़ी की नौकरी कब से कर रही हैं आप?
0: 20 साल से ज्यादा हो गई।
1: जैसे आपने पढ़ाई 5 तक करी, तो आंगनबाड़ी में कैसे है आपकी नौकरी लग गई?
0: आंगनबाड़ी में मैं लग गई थी।
1: कैसे लग गई थी मतलब?
0: पहले उनने इन्हें 4 जन्म के कागज दिए थे भर के, तो सबने 200 रुपया में लगते।
1: अच्छा,
0: तो सब जनन ने कही 200 रुपया में का खा रहे, हमें नहीं करने, हमें नहीं करने। सो फिर बोली चाची तुम लग जाओ, अभी 200 में रह कब ज्यादा भी हो सकत, इन्हें 350 में लगते हमें 200 रुपये।
1: तो
0: फिर हम इनके ससुर बोले लाला हम दे दे वो करें तो मैं 2-4 पहली नाच खावे के लाने बजे का कर। फिर इनके ससुर दे देते 2-4 पहली नाच से पानी भरे आते
1: इनको।
0: फिर लगे रहे इनके तो पानी तो अभी छोड़ दो हमने बनक नहीं करे। जब से हमने आंगनबाड़ी करी जब इसे पानी भर
1: उनको
0: मतलब खावे पीवे की परेशानी से, कि अब जैसे नहीं आ तो जिदे तो सकते खावे, नहीं करते तो को दे रहो।
1: सही बात
0: है, दे रहो तो को भी ना करो।
1: और आज आपको कितनी मिल जाती, मतलब आपको घर चला भी ला के मिल जाता आपको?
0: आप 5,000 होगा ये 2-3 महीना, नहीं 2,500
1: फिर
0: 350 आए हमारे, फिर 1500
1: भाई। तो फिर धीरे धीरे बढ़ते चले गए आपके पैसा। बहुत बढ़िया, आपके पूरे जीवन को अनुभव कर रहा हो, मतलब आप अपनी जिंदगी से आपने का सीखो?
0: हम जो खेती किसानी सीखी हो आंगनबाड़ी कर ली, फिर से जाकर
1: नहीं आपको क्या लगा कि पढ़ाई लिखाई अपने जीवन में ज्यादा महत्व दें?
0: पहले तो महत्व देखो आप सोच रहे हैं आदमी के पढ़ लिख लेते तो और अच्छे हो जाते, लेकिन जब पैसे ही नहीं है तो कहाँ पढ़ा लिख रहे हैं।
1: लेकिन आप सोचती हो ना कि पढ़ाई जरूरी है अपने जीवन के।
0: अब जैसे पेट को तो रोटी नहीं है, पढ़वे की का सोच रहे बताओ?
1: सही बात है, लेकिन सरकारी स्कूल में बहुत सुविधाएं मिल रही है आजकल, फ्री किताबें मिल रही
0: है, सब
1: मिल
0: रही है। लेकिन मिल रहा पहले कहाँ मिल रहा?
1: हाँ, पहले नहीं मिला तो, लेकिन अब मिल रही तो अभी के नाम में पढ़ाई चाहिए, है ना। बिल्कुल, तो अम्मा और का वो चाहती हूँ आप अपनी तरफ से
0: और का कहेंगे,
1: मतलब हमारे समुदाय के लाने जो आप खुद सुन रहे हैं इस समय, तो उनके लाने का संदेश दे वो चाहती है अपनी लड़की को पढ़ाए चाहिए कि नहीं?
0: अपनी को तो सब हमारी मोड़ी सब 8-8 पढ़ी नातने नाती पढ़े
1: पढ़ा चाहिए।
0: हाँ, सब पढ़ रहे, को पढ़ रहा हो को बड़ी बड़ी हो गई सब, 7-7, 8-8 में करके छोड़ दो ब्याह पढ़ दो नातन की।
1: बहुत बढ़िया,
0: को पढ़ दो अब 2 नाती पढ़ रहे।
1: चलो बढ़िया अम्मा, आपने बहुत अच्छी बातें बताई अपने पूरे जीवन के बारे में हमें बताओ, ये लाने बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद,
0: धन्यवाद,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

रेडियो अपनी बात है, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे। दोस्तों एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर है आपकी अपनी रेडियो दोस्त वर्षा। और देखो साथी हरो, अभी अपन और सुन रहे थे लक्ष्मी जी को, जो कि राधापुर की रहने वाली हैंगी। इनसे अपन और ने जानो है गो कि इनके जीवन की का कहानी हती, कैसो इनको जीवन रहो है गो, और साथ ही में इनने अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में, इनको बचपन कैसो बीतो है गो, बचपन में जी खेल कौन कौन से खेला था थी, ये सब बातें अपन और ने जानी हैंगी। और साथ में इनने बताई हैगी कि 20 साल से जी आंगनबाड़ी में एक कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रही हैंगी। तो देखो पढ़ाई पहले इनने भले ही कम करी, लेकिन नौकरी इनकी लग गई, जब बहुत अच्छी बात हैगी। कहे कि पहले तनक सी पढ़ाई को भी बहुत बड़ा महत्व हो, तो पहले नौकरी जो है आदमी इनको ढूंढत थी, लेकिन आज के समय में अपन और देखें तो आदमी नौकरी इनके लाने परेशान हो रहे थे, होते भटक रहे हैंगे। तो ऐसे अपने कहवे को जो ही मतलब है वो कि पढ़ाई अपने जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रखत हैगी, पढ़ाई को सबसे पहलो महत्व दो। जैसे अपन और सोचन लगा थेंगे कि बिटिया बड़ी हो गई तो बस उनकी शादी कर दो, या फिर बड़े हो के सिर्फ उनको चौका वासन करने आ है वो, घर को काम ही देखने आ है वो, लेकिन जब सोच अपनी जो हैगी वह तनक अपन को बदलने आए, पहले अपनी अपनी मोड़ियन को पढ़ाई जरूर करवावे, ज्यादा नहीं तो आप इंटर तक तो पढ़ाई उनकी जरूरी करवाने हैगी। ताकि आज देखो लक्ष्मी जी सोचती हैगी कि अगर उन्हें तनक और पढ़ाई करी होती तो भी हो सकता है कि कार्यकर्ता की जगह और अच्छी कोनो पोस्ट पे होती और उन्हें अच्छी एक तनख्वाह मिल रही होती, जिसकी वजह से उन्हें अपने परिवार चलाने में कोनो भी दिक्कत ना आती, को सहारो उन्हें नहीं लेना पड़ता। तो देखो अब अपनो समय होते हो आज के कार्यक्रम स्त्री एक कहानी से जावे को, लेकिन साथियों जो कार्यक्रम आप सबको कैसो लगो है वो, इमें आपकी का राय सुझाव हैगी, या फिर आपके भी गाँव में या आपके आस पास कोनो ऐसे लोग हैंगे, या फिर ऐसी कोनो स्त्री हैगी जिनकी कहानी रेडियो के माध्यम से आप उन्हें सुनबो चाहतेंगे, तो ये लाना हमें जरूर बतावे हमारे पते पे पत्र लिख के या फिर फोन के माध्यम से। पते के लाने हमारा पतो है गो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा। और साथ ही आप हमें अपनी राय सुझाव फोन के माध्यम से भी दे सकते हैंगे, साथ में आप हमें SMS भी कर सकते हैंगे, और अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैंगे तो व्हाट्सएप भी आप हमें कर सकते हैंगे। तो देखो कितनी अच्छी सुविधा हो गई हैगी, क्या आज के दौर में अपन देखें तो अपने सब साथी व्हाट्सएप को खूब एकदम से उपयोग कर रहे हैंगे और व्हाट्सएप ही चलाते हैंगे, तो अपन मैसेज भी एक कर सकते हैंगे, या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आप रिकॉर्ड करके भी कछु भी हमें भेज सकते हैं अपने कार्यक्रम के बारे में राय सुझाव। तो देखो आप अपना समय होते गो आज के कार्यक्रम से जावे को, तो अपनी रेडियो दोस्त वर्षा को दो जावे की इजाजत। अपनी फिर हुई मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक आप ऐसे ही सुनते रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 अपना रेडियो अपनी बातें। नमस्कार, और चला चला सुनो आप गीत खो जी खो गा रहे हैंगे दिनेश सोनी।

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलिहान में। और किसान साथियों कैसे हैं, हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और इस बार चूंकि किसान पर हमारे किसानों की जो फसल की बुवाई वो बहुत पीछे हो गई है और बहुत सारे किसानों ने वो भी नहीं पाई है, क्योंकि जून से लगातार इस बुंदेलखंड क्षेत्र में कई क्षेत्रों में लगातार बारिश होने के कारण हमारे किसान साथियों ने अपने खेत में बहुत ही कम फसल लगाई है, जिससे हमारे किसानों का भारी नुकसान भी हुआ है। और खुशी भी इस बात की होगी कि इस बार बारिश बहुत अत्यधिक होने से हमारे किसान साथियों के लिए फसल में काफ़ी मुनाफा होगा। लेकिन क्या करें, ये मौसम परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन है, इसको कौन रोक सकता है। प्रकृति के साथ हम लोग जो निरंतर बदलाव देखने को मिल रहा है, छेड़छाड़ी कर रहे हैं, इससे बदलाव जो हो रहा है उससे जो खामियाजा हमें और आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है, सभी को भुगतना पड़ रहा है। खैर, लेकिन एक पहल है आज के हमारे इस कार्यक्रम में, चूंकि स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप्स और नए विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना है, जिससे देश का आर्थिक विकास हो और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हो। इसी को लेकर आज के हमारे इस कार्यक्रम में आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो मशरूम और खासतौर पर जो हमारे खेतों में उगाई जाने वाली चीजें रहती हैं उससे किस तरीके से जो फायर की जो कपड़े रहते हैं किस तरीके से बनाए जाते हैं, किस तरीके का स्टार्टअप है ये, भारत के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। किस तरीके का स्टार्टअप, इसको हमें सीखना और समझना होगा, इससे किसानों की आर्थिक मदद होगी और नई चीज हमारे देश को मिलने जा रही है। तो आइए सुनते हैं इस परिचर्चा को।
1: ये जो टेक्नोलॉजी हम विकसित

ये प्रोटेक्टिव अपैरल टेक्नोलॉजी है जो डीप टेक भी है, नोवेल टेक भी है और ड्यूअल टेक भी है। तो ये हम बना रहे हैं मशरूम माइसीलियम से और इसमें हम सस्टेनेबल इनहेरेंटली फायर रिटार्डेंट प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल विच इज हाई परफॉर्मिंग वेयर वो बना रहे हैं हम इससे। तो हम इसमें मशरूम उगाते हैं हमारे माइसीलियम स्ट्रेन से जो हमने प्रोक्योर किया है, हमने काफी स्टडी के बाद उसे ऑप्टिमाइज करा है और फिर हम इसे ग्रो करते हैं, उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं। अभी हमने पहला इटरेशन बना लिया अपने फाइबर का। तो ये हम जो बनाते हैं ये एग्रीकल्चरल वेस्ट पे ग्रो करते हैं, तो इससे हमारे जो किसान हैं उन्हें भी आर्थिक मदद मिल जाती है क्योंकि हम उन्हें कुछ पैसे दे के उनसे वो वेस्ट लेते हैं।

0: सपोर्ट मिले और इंकरेजमेंट मिले, तो हम और भी चीजों कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जितना भी हमारा कनेक्ट होगा और जितना हमें सपोर्ट मिलेगा उससे हम एक लेवल पे पहुंच जाएंगे जहां से हम खुद सक्षम हो जाएं।
1: तो सर्कुलर इकोनॉमी को कैसे इंपैक्ट करेगा ये स्टार्टअप?
0: देखिए, जैसे कि मैंने बताया, ये सारा हम एग्रीकल्चर वेस्ट यूज कर रहे हैं, फिर वेस्ट को रिसाइकल कर रहे हैं, उससे हमारा मशरूम ग्रोथ हो रहा है। फिर हम बाद में जब ये प्रोडक्ट देंगे तो हम ये भी टेक्नोलॉजी विकसित करने की कोशिश करेंगे कि पहला या दूसरा रिसाइकलिंग जो भी हो वो हमारे पास वापस आए, उसके बाद हम उसको वेस्ट में डालें जिससे कि वो बहुत जल्दी बायोडिग्रेड हो जाए। तो ये पूरा ही सर्कुलर इकोनॉमी का ही पार्ट है कि हम वेस्ट भी यूज कर रहे हैं, फिर वी आर टेकिंग सम वेस्ट, वी आर अपसाइकलिंग इट और रिसाइकलिंग इट एंड मेकिंग इट इनटू अ मोर हाई वैल्यूएबल प्रोडक्ट जिसकी एक्सपोर्ट में भी रिक्वायरमेंट है। मतलब अगर आप जैसे वेस्ट की बात करें, वो 10 रुपए किलो मिल जाता है हमें, 7 से 10 रुपए किलो के बीच में। अब हम उसको यूज करके हम ऐसा कुछ बना रहे हैं जिसकी जिसका पैसा ही लाखों में जाएगा, जो बिक रहा होगा कुछ लाख में एक प्रोडक्ट। तो ये इतना हाई वैल्यूएशन जो हो जा रहा है वो हम उसको वेस्ट को प्रोसेस करके कर पा रहे हैं। तो ये पूरा सर्कुलर इकोनॉमी का ही पार्ट है, तो ये बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होगा सर्कुलर इकोनॉमी पे।
1: तो अगर मैं आपसे आपका विजन और मिशन जानना चाहूँ तो वो क्या लेकर चल रही है भैया?
0: तो जैसे हमारा विजन जो है, और विजन लोग कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए जो अनरियलिस्टिक लगे, पर क्योंकि वो अनरियलिस्टिक होगा तभी हम एक ऐसी जगह सोच रहे हैं जहां कोई और ना जा पा रहा हो। तो हमारा विजन ये है कि हम इंडिया को ऐसी प्रौद्योगिक क्षमता दें टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में, और वो सस्टेनेबल हो और दुनिया भी उससे प्रभावित हो, और अभी जितने भी सिंथेटिक चीजों से चीजें बन रही हैं वो बायो बेस्ड हो जाएं, और हमारे भारत के पास इतनी क्षमता हो कि वो टेक्नोलॉजी लीडर बन जाए इस चीज में। और हम चाहते हैं कि हम दुनिया में बायो फैब्रिक्स जो हाई परफॉर्मेंस वेयर है उसके सबसे बड़े लीडर बने टेक्नोलॉजी इनोवेशन में, क्योंकि हम लगातार टेक्नोलॉजी इनोवेट करेंगे, हमारा यूएसपी यही है। और हमारा मिशन ये है कि हम जितना जल्दी हो सके एक स्टेज तक पहुंच सके जहां पे हम दिखा सके कि अब ये सब कुछ हो गया है, अब बस हमें जग जीतने की देरी है।
1: और आज आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: जैसे कि सभी जानते होंगे कि स्टार्टअप करना एक बहुत ही दुष्कर कार्य है, इतना आसान नहीं होता। तो मैं ये कहना चाहूंगी, अगर आप में थोड़ी भी लगन है, कोई भी आइडिया है जो आपको लगता है कि हमारे देश की उससे उन्नत होगी, उसकी मदद होगी, लोगों की सहायता होगी, तो मैं ये कहना चाहूंगी कभी ये मत सोचिए कि नहीं हो सकता। आप एक बार उसको दिल में ठान लीजिए, उसको लेके आगे बढ़िए, वो अवश्य होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेहनत करें उसका फल आपको कभी ना मिले, पर मेहनत करना जरूरी है। अगर आपने कहीं भी ये सोचा है कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो कि कुछ नया है जिससे कई लोगों को बहुत लाभ होगा, हमारे देश को बहुत लाभ होगा, उसकी उन्नति होगी, तो मैं आग्रह करूंगी कि आप सब अगर मुझे देख रहे हैं तो ये चीज करें, क्योंकि हमारे भारत को अभी इस सब चीजों की बहुत जरूरत है, हमें बहुत आगे बढ़ना है, और ये सब आप सबकी की मदद से ही हो सकता है।
1: और मैं यही कहूंगी कि जो देश की रक्षा है वो सिर्फ सीमा पर लड़कर नहीं की जाती, बल्कि हमें टेक्नोलॉजी जैसे वसुंधरा जी की टेक्नोलॉजी, और ये इतना सोच रही है कि देश को किस चीज की जरूरत है, जो हमारे चैलेंजेस हैं उनको किस तरह से कम किया जा सकता है, तो ये भी एक बड़ी देश सेवा है। वसुंधरा जी, आप अपने मिशन और मिशन में जल्दी से कामयाब हो, हम यही दुआ करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत कल्याण में। और अभी आपने इस चर्चा को सुना, और इस चर्चा को जो चूंकि हमने कार्यक्रम जो उठाया है वो हमारी डीडी किसान से हमने इस कार्यक्रम को लिया गया है, तो उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार करते हैं कि इस तरीके की जानकारी उनके सहयोग से रेडियो बुंदेलखंड के माध्यम से दूसरों तक पहुँचाने की हम लोग जो पहल कर रहे हैं वो दूसरों तक पहुंचेगी, किसान साथियों तक पहुंचेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी, तो इसका उनको लाभ मिलेगा। वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम से जाने का, तो कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा हमारे इस पते पे। पता है हमारा रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तकेला के पास ओरछा। फ़ोन नंबर है हमारा 92-19-20-77-49। इस नंबर पर आप कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति, आपकी हमारी फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं इबेरा अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम आसपास। दोस्तों, आज आसपास कार्यक्रम में अपन सुने एक सामाजिक कवर स्टोरी खो। और दोस्तों, एक के संगे संगे पहला सुन लेते एक बढ़िया से गीत खो, और गीत के बाद फिर सुने अपन स्टोरी खो। सो दोस्तों, आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।

हाँ देखो दोस्तों, जो कितनों बढ़िया गीत अपन सब जनन ने सुनो और ये गीत को आनंद लाओ है दोस्तों। ये गीत को गा रहे थे अमोल अहरवाल जी और राजकुमार त्यागी जी। अब दोस्तों ये गीत के बाद अपन कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, कार्यक्रम में सुनाते हैं एक बढ़िया सी सामाजिक स्टोरी को। सो दोस्तों आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। नमस्कार दोस्तों, आप हैं ये वक्त अपने दोस्त माता दीन के संग में। दोस्तों आइए सुनते हैं एक लघु कथा, कहां गया शिवलिंग। एक साधु महाराज तीर्थ यात्रा करने निकले, साथ में उनके पास जितना भी धन था उसको भी ले गए, क्योंकि उनका कोई ठिकाना तो था नहीं। जब वह इस धन को सुरक्षित रखते तीर्थ यात्रा करते करते वह गंगा के किनारे पहुंचे। गंगा के किनारे बहुत भारी भीड़ थी। साधु महाराज को गंगा स्नान करना था, परंतु उन्हें अपने धन की चिंता सताने लगी। इतनी भीड़ में यदि अपने धन को गंगा के किनारे छोड़ते हैं तो उसे चोरी होने का डर है। उनके मन में एक उपाय आया और उन्होंने एक ऐसी जगह ढूंढी जिस तरफ किसी का ध्यान नहीं था। गंगा के किनारे रेत ही रेत थी। साधु महाराज ने उस रेत में अपना धन दबा दिया और उसके ऊपर एक शिवलिंग बना दिया, जिससे उन्हें जगह की पहचान बनी रही। इसके बाद साधु महाराज निश्चिंत होकर स्नान करने चले गए, परंतु जब वह स्नान करके वापस आए तो उन्होंने देखा उस स्थान पर असंख्य शिवलिंग बने हुए थे और साधु महाराज किंकर्तव्य मूढ़ रह गए कि अब इस विशाल शिवलिंग समूह में वो शिवलिंग कहां से ढूंढे जिसके नीचे उनका धन छुपा है। वह अपना सिर पीटते रह गए। लोगों ने बिना सोचे समझे रेत पर शिवलिंग बना दिए। सोचा होगा कि यह भी एक प्रथा है, ऐसा ही है यह संसार। लोग धर्म के नाम पर बिना सोचे समझे अंधानुकरण करते हैं, चाहे उससे किसी का अहित ही क्यों ना हो। इसे ही कहते हैं गतानुगति को लोकः। दोस्तों इस लघु कथा की लेखिका थी सविता शर्मा नोएडा से, और दोस्तों इसको आवाज और म्यूजिक से सजाया है आपके रेडियो साथी माता दीन कुशवाहा जी ने।

देखो दोस्तों, जापान सब जन ने स्टोरी सुनी और ई स्टोरी से अपन को कछु सीख सोले ने। अब दोस्तों एक के संगे संगे बिलादरी से अपन स्टोरी को सुनना है। आप और कह रही है कि माता दिन भैया मनोरंजन को बिल्कुल ध्यान नहीं कर रहे। जी हाँ दोस्तों, मनोरंजन के लाने हमें आप सब जन को ध्यान है। सो मनोरंजन में सुना थे अपन एक बढ़िया से गीत को, लेते गीत को आनंद।

बिल्कुल दोस्तों, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। देखो साथियों, कितना प्यारो जो गीत अपन सब जन ने सुनो है और ये गीत को आनंद लो है। ये गीत को गा रहे थे भैया राकेश कुमार पांडे जी। अब दोस्तों यही गीत के संगे हम आप सब जन को जो बता देवे कि आज के ही कार्यक्रम से आपके दोस्त माता दिन जी को जावे को समय हो गए है, सो हमें दो ई कार्यक्रम से जावे की अनुमति।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप सुन रहे थे आज की सभा के प्यारे प्यारे से कार्यक्रम। सो दोस्तों, आप सब जन खोजे आज के कार्यक्रम कैसे लगे। अब दोस्तों आज की सभा इतनी संपन्न होते है, सो चलत चलत आपने लिख लो हमारे फोन नंबर को और पते को, जिसे आपने फोन नंबर पे और पते पे कार्यक्रम के राय सुझाव भेज सके। दोस्तों हमारा फोन नंबर है 92-19-20-77-9 लगा के और हमें बता सकत के हमें कार्यक्रम कैसे लग रहे। अब दोस्तों लिख लो हमारे पते को, हमारा पतो है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तेगेला के पास ओरछा। सो आप और ई पते पे चिट्ठी पत्री लिख के भी भेज सकत के हमें कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं। अब आज की सभा को इतनी समापन होवे को समय हो गयो है। नमस्कार।
1: ये आवाज है बुंदेलखंड की।